हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.3 MHz पर। श्रोताओं, कुछ लम्हों बाद सुबह के 6 बजे चाहते हैं। अब हिंदी समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के से पल हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेन सिंह ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडम

0: मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा है। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ETF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और DTH पर उपलब्ध है और इसके अलावा एंड्रॉइड और iOS पर हमारा एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसका नाम है न्यूज ऑन AIR। इसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दिन रात लगातार ले सकते हैं और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। ये है विविध भारती वंदन वार।

चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के

बादल झुक जाते हैं। संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। यह था चिंतन, अब भक्ति संकीर्तन।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए आज दिनभर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। सुबह 7 बजे बोली बिसरे गीत कार्यक्रम होगा। 7:30 पर आप सुनेंगे हम ही राही प्यार के। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है ऐसी लागी लगन, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने बने गायक अनूप जलोटा। आज 5वीं कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विकी कौशल पर। यह कार्यक्रम सुबह 9:30 पर होगा और रात 9:30 पर। दिन में 1 बजे सुहाना सफर कार्यक्रम सुनिएगा, सुरीला सफर कार्यक्रम सुनिएगा। 3:30 पर आप सुनेंगे नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक शकुंतला।

आज शाम 4 बजे जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। सुबह 8:15 पर और दिन में 2:15 पर दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी।

शाम 5:30 पर तराने गए पुरानी। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय से निकालकर प्रस्तुत की जा रही है। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी पत्नी का पत्र के वाचन का दूसरा भाग।

0: मिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम,
0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस पर इंडिया में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने की

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटीं, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानी से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस

मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो, तुम्हें अपने कर्तव्य का

दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती से रामचरितमानस के पद का वाचन सुन रहे थे। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश खिदमत है कार्यक्रम रूपरेखा। श्रोताओं, आपकी खिदमत में हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा।

आइए श्रोताओं, पहले हल्की नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 6:55 पर संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। श्रोताओं, आज 7:10 पर प्रातः आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज सुबह 7:40 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ले चलेंगे और 8:15 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। आज प्रातः 8:30 पर विविध भारती से सुनेंगे आप सदाबहार सुरीले कार्यक्रम भारत की गूंज। ये कार्यक्रम भी होगा आज प्रातः 9:00 विविध भारती से। और आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 9:30 पर। ये कार्यक्रम भी आप विविध भारती से सुनेंगे।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे अपना पसंदीदा कार्यक्रम आप सुनेंगे नमस्ते हिसार। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं विविध भारती से, और यादों की महफिल कार्यक्रम दिन में 12 बजे आप सुनेंगे विविध भारती से। श्रोताओं, दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। दिन में 1:10 पर गीत माला कार्यक्रम हम रिले करेंगे विविध भारती से। दोपहर 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से, और दिन में 4 बजे गीतों भरी कहानी भी आप सुनेंगे विविध भारती से।

श्रोताओं, आज शाम 5 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। आज शाम 6:20 पर प्रभु वंदना का कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत। 6:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंग। आज शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से। और 7:30 पर कार्यक्रम होगा म्हारे गांव। श्रोताओं, आज रात्रि 8 बजे शहर की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा आपके लिए पेश किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। और श्रोताओं, आज रात 10 बजे अपने पसंदीदा कार्यक्रम फोन कॉल्स पर आधारित हेलो हिसार का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे।

श्रोताओं, अब आपको कल के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। कल सुबह 6:00 हिंदी समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली के लिए चलेंगे। कल प्रातः 6:05 पर कार्यक्रम वंदन वार होगा विविध भारती से। कल सुबह 6:45 पर पेश खिदमत होगी आपके लिए कार्यक्रम रूपरेखा। 7:10 पर लोक रंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और 7:40 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात।

श्रोताओं, कल सुबह 6 बजे, माफ कीजिए, कल प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। कल प्रातः 8:15 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। कल सुबह 8:30 पर विविध भारती से आप सुनेंगे सदाबहार सुरीले कार्यक्रम।

श्रोताओं, भारत की गूंज कार्यक्रम कल प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती से, और आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर होगा विविध भारती से।

शतम् कल सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी मंच और बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे कल प्रातः 10:30 पर कार्यक्रम बाल सभा। श्रोतों कल दिन में 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती से होगा और 12 बजे पल पल दिल के पास ये कार्यक्रम भी आप विविध भारती से सुन सकते हैं। दोपहर 2:30 पर गीत गुंजन कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से और श्रोतों कल शाम 5 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हिसार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से कल शाम 6:20 पर और कल शाम 6:30 पर महिला बहनें अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगी घर आंगन।

श्रोताओं, कल शाम 7 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम हरी पसंद। रात्रि 8 बजे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नजर फरमाइएगा व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। रात 10 बजे ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और श्रोताओं, कल रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। कुछ ही लम्हों बाद सुबह के 6:55 हुआ चाहते हैं। संस्कृत समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोपदेशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक सम्बन्धान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैण्ड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेन्सन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते त्रिरूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किम राज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्यत्व दिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः, सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बित प्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतोवा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इजराइल लेबनान देशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेश विभागः अवदत्। विदेश विभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जून मासस्य द्वित्रिदिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7-2 पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
1: भारत और संयुक्त अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी असार कार्यक्रम लोकरंग के साथ। आज के लोकरंग कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणवी गीत संगीत के साथ।
1: विश्वकर्मा

0: लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, यूं यह मारी हरियाणवी संस्कृति का मजबूत आधार।
1: ये तू मरती कद्यो मरता

से तू ये भेस कवारे ने बाबुल के घरी ये उम्र बेताजी पड़ी रही सब।

लड़कियां एक ना लगी चोट तेरे भी इतना दुख हो से दू तेरा गले घोट ये पीठ फेर के करे ये सारे ये करे घूंघट की ओट बिन समझे बेकूफ बतावे।

0: सुबह सवेरे घर के काम गीत संगीत ते मिले आराम, खेत में जावे खूब कमावे धरती ने खुशहाल बनावे। जैविक खेती प्राकृतिक खेती और जहर मुक्त खेती अपनाओगे तो हमारा सेहत स्वास्थ्य अच्छा बढ़िया रहेगा।
1: ये रे कौन थीवा।

है जिसका रंग है जिसका रंग कुछ शाम था मेरे मामा खेत आ रही थी वाला बैठ

0: चेर आठा सुडोले गोले बोल पे कमाल ओए पीरा मके लाडुआ की
1: बाप
0: बन।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, अभी आप आजाद सिंह के संग कार्यक्रम लोक रंग सुन रहे थे। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, आपके लिए पेश है कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुप्रभात के साथ आपकी आवाज की दुनिया की दोस्त क्षमा इस कार्यक्रम में आज आपके साथ। आइए श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आज के पंचांग के साथ। श्रोताओं, आज 16 मई 2026 का पंचांग जो है, पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। 16 मई 2025 को देर रात 1:31 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उसके बाद सौभाग्य योग 16 मई 2026 को सुबह 10:26 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। श्रोतों, आज का दिन विशेष है। यह दिन धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं।

और आई श्रोताओं, अब कुछ मौसम का हाल जान लेते हैं। आज 16 मई 2026 को हिसार का मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस प्रकार रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन भर आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। बारिश की कोई संभावना आज नहीं है। दोपहर में भीषण गर्मी महसूस आज हो सकती है।

विचार। इतने सुंदर बनो कि लोग तुम्हारा चेहरा नहीं तुम्हारा व्यवहार याद रखें। प्रेम ऐसा दो कि टूटे हुए हृदय भी तुम्हारे शब्दों में सुकून खोजने लगे, क्योंकि संसार में सबसे उजली रोशनी सूरज नहीं एक दयालु हृदय देता है। जी हां श्रोताओं, मन की तरलता, मन की सरलता, मन की सादगी और मन की उदारता, किसी भी इंसान में ये सब विद्यमान है तो यकीनन प्रभु हर हाल में उस शख्स के हमेशा साथ हैं। श्रोताओं, कभी कभी इंसान कुछ पाने की चाह में, कुछ पाने की ललक में अपने सच्चे भावों को चमक के चकाचौंध में कहीं खो बैठता है। ऐसे में उसे सिर्फ पैसा, हैसियत और अपनी तरक्की नजर आने लगती है और ये भूल जाता है कि ईश्वर सृष्टिकर्ता वो प्रभु सिर्फ भाव का भूखा होता है। हमारी धन दौलत से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। श्रोताओं, ये शाश्वत सत्य है कि ईश्वर प्रदत्त जो सुंदर चेहरा, जो तन हमें मिला, वो ताउम्र कांतिमय रहेगा ये संभव नहीं है। वक्त के साथ, उम्र के साथ वो ढलता है, लेकिन श्रोताओं एक चीज है जो कभी नहीं ढलती अगर हम ना चाहें तो, वो है हमारा व्यवहार। जी हाँ श्रोताओं, एक बार को कोई भी शख्स हमारा चेहरा भूल सकता है, उसकी याददाश्त में हमारी सुंदरता धूमिल पड़ सकती है, लेकिन हमारा सदा सदा का अच्छा व्यवहार वो शख्स कभी भी नहीं भूल सकता है। श्रोताओं, ये पूरा संसार सूरज की रोशनी से रोशन है, लेकिन अगर हम प्रेम की बात करें तो दोस्तों, सच्चा प्रेम हम सब की जिंदगी में एक ऐसा नायाब उजाला है जो बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है और हर किसी के भी टूटे हुए हृदय को प्रेम के सुकून भरे शब्दों से शीतलता प्रदान करता है। बस दोस्तों, बात इतनी सी है कि वो प्रेम सिर्फ सच्चाई के ताने बाने से बुना होना चाहिए। श्रोताओं, सच्चा प्रेम हमेशा सादगी का रूप लेकर हमारे सामने प्रकट होता है। बस हमारी आंखें उस उजाले में सही सही देख पाती हैं या नहीं, ये सब हम पर निर्भर करता है। श्रोताओं, हम सब अपने मन के भावों से अपने आप को इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बनाएं कि हम अपने शब्दों से ही किसी का टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ सकें और अपने दयालु व्यवहार से हमेशा हमेशा के लिए किसी की रूह में प्रेम बनकर श्री कृष्ण की राधा मीरा जैसे हमेशा के लिए समा जाएं।

आयशुदम, अब रामचरितमानस की पद का वाचन करते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अर्थात उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति बवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊं, जय अरु विजय जान सब को। अर्थात हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप में दोनों भाई, तामस असुर देह नित पाई। कनक कपीसु अरु हाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मत मोचन। अर्थात उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराय बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनिमारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। यानी वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने वरा सुवर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण

आइए दोस्तों, आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने हमें बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, ज्ञान दिया, अच्छा शरीर दिया, भावनाएं दी, लेकिन फिर आपने हमें घमंड क्यों दिया, ईर्ष्या क्यों दी, जलन क्यों दी, किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया, किसी को स्वस्थ और किसी को विकलांग क्यों बनाया, आप चाहते तो सबको एक जैसा अच्छा बना सकते थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, बुद्धि, ज्ञान, शरीर और जीवन ये सब मैंने दिए हैं, लेकिन घमंड, ईर्ष्या और जलन मैंने नहीं दी। ये सब इंसान खुद पैदा करता है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक चीज दी है, चुनाव। चाहो तो किसी की मदद करके इंसान बन जाओ और चाहो तो घमंड करके हैवान बन जाओ। हाँ, दुनिया मैंने बनाई है, लेकिन उसे अच्छा या बुरा बनाना अब तुम्हारे कर्मों पर है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन जीवन को अच्छा या बुरा बनाने का चुनाव हमारे खुद के हाथ में होता है। ये हमारे अपने कर्म होते हैं।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुप्रभात से अपनी आवाज की दुनिया की दूत क्षमा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही लम्हों बाद सुबह के 8 बजे चाहते हैं। अब समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं।

0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु

0: और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1.5 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्ता का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने

0: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वागदेवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा, अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आइए सुने चित्रलोक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम का आगाज करते हुए आज हम जाने माने निर्देशक धर्मेश दर्शन को दे रहे हैं जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। अगर आपको याद हो तो धर्मेश दर्शन ने अपने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म लुटेरे के जरिए किया था। ये साल 1993 की बात है। इस फिल्म में सनी देओल और जूही चावला थे, लेकिन उन्हें जो नाम मिला वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म के जरिए मिला। ये फिल्म सन 1996 में आई थी और इस फिल्म का तो संगीत भी बहुत ज्यादा चला था। तो धर्मेश दर्शन के कुछ गाने सुनते हैं आज के चित्रलोक कार्यक्रम में शुरुआत में। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी और साथियों की आवाजें हैं। सभी को याद होगा कि जब जब फूल खिले जैसी फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने राजा हिंदुस्तानी बनाई थी और आमिर खान इस फिल्म में थे।

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। एक बेमिसाल शायर
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से
2: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

नाजी फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस फिल्म में विकी कौशल ने सैम मानिक शौकी नहीं, इस फिल्म में विकी कौशल ने एक जासूस की भूमिका निभाई थी और आगे सैम मानिक शौकी

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और यह है चित्रलोक का अगला गाना।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

बोल दिया अनु मलिक की तरह से। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज, फिल्म का नाम है छिछोरी, अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो

फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

0: 2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।
1: बच

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था।

जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: विदह मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आज के फनकार कार्यक्रम विविध भारती से। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आपके लिए पेश खिदमत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार। लेकिन दोस्तों पहले आकाशवाणी हिसार की एकमात्र दो बेहतरीन आवाजों में आइए सुनते हैं ये प्रोमो।
2: अर्ज किया है रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
3: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
4: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
3: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
4: हर मंगलवार शाम 5 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
5: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
4: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
3: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
6: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
4: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
7: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison.
3: कोई कला में उत्कृष्ट है?
4: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
3: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
4: कार्यक्रम एक शख्सियत
3: हर सोमवार शाम 5 बजे
4: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताज़ा खबरें।
8: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
4: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
9: मैं अलबेली घूमूं अकेली।
3: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
10: अभी न जाओ छोड़ कर।
4: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
3: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
4: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
3: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
4: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: क्या आप परेशान हैं?
11: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
4: क्या आप खुश हैं?
12: आज मैं ऊपर।
3: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
4: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
13: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
3: या आप प्यार में हैं?
14: पहला पहला प्यार है।
4: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
15: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
3: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
4: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
3: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
4: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: हर सुबह एक मौका।

0: है
1: खुद को कल से बेहतर बनाने का?
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
1: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का?
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
1: आकाशवाणी हिसार के साथ।
2: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
1: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

श्रोताओं, आपका प्यार, आपका इंतजार, आपका ख्याल, आपका ख्वाब, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी सुरीली धड़कनों की सदा और आपके मखमली एहसासों की फरमाइश आकाशवाणी हिसार।

दोस्तों, आकाशवाणी हिसार आपकी बेसब्री का इंतजार है, आपकी मोहब्बत का करार है और बस बेशुमार बेइम्तहा आकाशवाणी हिसार से आप सबको बहुत प्यार है।

दोस्तों, मोहब्बतें नए आगाज़े बयां के साथ आज एक बार फिर आवाज़ की दुनिया की दोस्त क्षमा आपके साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार में हमारे सभी चाहने वालों को मोहब्बत से भरा नमस्कार।

हवा के हर झोंके से बस तेरी ही खुशबू आती है, हवा के हर झोंके से बस तेरी ही खुशबू आती है, कहती है आ मुझसे मिल घटा बनकर, ले हाथों में मेरा हाथ ले ले और बस एहसासों में तू मेरी मोहब्बत का आगाज कर ले।

दोस्तों हम भी चाहते हैं कि हवा हमारे संग संग चले, लेकिन फिलहाल तो दोस्तों हवा का नाम नहीं है और धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बेशुमार है जो हाले दिल को हिला रही है। और दोस्तों आप तो हमारे दिल की हलचल को बढ़ा रहे हैं। पूछे कैसे, वो ऐसे है दोस्तों कि आप हमें व्हाट्सएप लगातार भेज रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को फरमाइशी कार्यक्रम समझ रहे हैं, जबकि दोस्तों ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। चलिए फिर भी आपकी मोहब्बत का जो आगाज है वो बहुत ही खूबसूरत है, हमें बेहद पसंद आता है। फिलहाल आप नमस्ते हिसार कार्यक्रम अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर सुन रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब चंद खबरों का खुलासा जो है आपकी नजर करते हैं।

मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग अब वैल्यू चेन पार्टनर्स और एफपीओ की मदद देगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत किसानों तक प्रमाणिक बीजों की सप्लाई दिए जाने को लेकर योजना बनाई है। कृषि विभाग के पास इसको लेकर किसानों के वैल्यू चेन पार्टनर्स और एफपीओ को आवेदन करने होंगे। किसानों को सब्सिडी रेट पर मूंगफली के बीज दिए जाएंगे। इसके बाद

यही वैल्यू चैन पार्टनर्स या FPO की फसल को बिकवाने में सहायता करेंगे। कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित बीज ही किसानों को मिलेंगे, जिससे मूंगफली की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ेगा।

दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने मधुमक्खी पालकों को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि मई जून की तेज गर्मी और लू से कॉलोनियों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, शहद उत्पादन घट सकता है, कॉलोनियों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। उत्तर भारत में तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ऐसे में फूलों में मकरंद की कमी बढ़ती है, पानी की कमी भी बढ़ती है, देखभाल नहीं हुई तो कॉलोनियां कमजोर पड़ सकती हैं। प्रोफेसर काम्बोज ने कहा, पालन स्थल के पास स्वच्छ ताजा पानी अनिवार्य है, बहता पानी भीतर है, ट्यूबवेल के सीमेंटेड टैंक भी उपयोगी हैं। कीट विभाग विज्ञान के अध्यक्ष ने कहा कि शुरुआती गर्मियों में कॉलोनियों को छायादार जगह रखा जाए, पेड़ों के नीचे जगह बेहतर है, फूड स्टार्ट से अस्थायी शेड भी बनाए जा सकते हैं, छतों में भीड़ न हो, वायु संचार बना रहे, निरीक्षण सुबह जल्दी किया जाए, शाम को भी किया जा सकता है, जरूरत पर चीनी पानी 1.1 मिश्रण से कृत्रिम आहार दिया जा सकता है।

और दोस्तों अब मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं। वैसे तो मौसम का मिजाज क्या चल रहा है आपको पता ही है। मौसम का मिजाज लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। अब दिन और रात के तापमान ने सामान्य से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया है कि 16 से 20 मई के बीच तापमान में भारी उछाल देखने को मिलेगा। इस दौरान मैदानी इलाकों में गर्म पश्चिमी खुश्क हवाएं चलेंगी, जिससे भीषण हीट वेव लू चलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान ने आगामी दिनों में बढ़ने वाली इस तपिश को देखते हुए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि इस अवधि में दिन के तापमान में जहां बढ़ोतरी दर्ज होगी, वहीं रात के तापमान में आंशिक गिरावट होने की भी संभावना है।

दोस्तों, हमारा बीज या धड़क धड़क जाता है, यानी कि हमारी धड़कनें और तेज हो जाती हैं जब हम आपके एहसासों को अपने अंदर महसूस करते हैं। ऐसे लगता है कि आपके एहसास हमसे हर लम्हा रूबरू होते हैं, और यही एहसास मोहब्बत का आगाज करता है। यही एहसास मोहब्बत में ढलते हैं और फिर हम आपसे नए अंदाज के साथ फिर से मिलते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार कार्यक्रम अपनी दोस्त क्षमा के साथ एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो दोस्तों, अब आपको भी इंतजार होगा और हमें भी इंतजार है कि आपसे हम दो सवाल करें और फिर आप हमको उन दोनों सवालों के जवाब लिखकर भेजें, फिर हम आपकी पसंद का गीत सुनवाएं। तो दोस्तों, हम हमेशा की तरह कहते हैं कि फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन लगातार हमारे दोस्त हमें फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी मोहब्बत ही इसे हम मान लेते हैं क्योंकि आप लगातार फरमाइश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो हम उन्हीं का नाम ले पाएंगे जो श्रोता हमें दोनों सवालों के जो जवाब है वो सही लिखकर भेजेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपको बताते हैं। जी हाँ, 9729253272 नंबर एक बार पुनः सुनिए, 9729253272। और अब दोस्तों, हम आपको प्रश्न बताएं उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि जिन दो सवालों के जवाब श्रोता के सही होंगे उनकी पसंद का नगमा हम आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी पसंद की दो तीन गीत लिखकर हमें भेजें, साथ में फिल्म का नाम भी लिखें, अपने गांव शहर का नाम लिखें और फिर अपना नाम लिखें। तो अब कागज और कलम आपके पास होगी तो आप नोट कर लीजिए हमारे सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है आपके लिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सवाल पुनः सुनिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपको नाम बताना है।

और अब हमारा दूसरा सवाल है, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का नेशनल अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की वो अभिनेत्री कौन है, आपको उनका नाम बताना है। सवाल पुनः सुनिए, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का नेशनल अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की वो अभिनेत्री कौन है, आपको इनका नाम बताना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने हमारे दोनों सवाल नोट कर लिए होंगे और अब हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाबों का। तब तक सुनते हैं ये बहुत ही सदाबहार सा नगमा, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, आपकी नज़र।

दोस्तों, इंतज़ार हमें था और हमारा इंतज़ार अब पूरा हो चुका है, क्योंकि हमें इंतज़ार था कि हमने जो आपसे दो सवाल किए थे उसके जवाब आप हमें लिखकर भेजें। तो हमारे कई श्रोताओं के दोनों जवाबों को लेकर हम बहुत खुश हैं कि उनके दोनों जवाब सही हैं। तो हम उनके नाम आपको बताएं उससे पहले हमने आपसे ये जो दो सवाल किए थे, पहले हम सवालों को दोहराते हैं और उसके उत्तर बताते हैं आपको। पहला हमारा सवाल था, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही जवाब है स्टेपीज। ये कान के बीच में स्थित होती है हड्डी। और हमारा दूसरा जो सवाल था, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का नेशनल अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की वो अभिनेत्री कौन है? इनका नाम है त्रिशा ठोसर। जी हाँ, ये सवाल जो हमने आपसे किए थे उनके दोनों जवाब हमने आपको बता दिए हैं। और अब हम बताने जा रहे हैं कि हमारे किन श्रोताओं के दोनों जवाब सही हैं। तो ये हमारे श्रोता हैं तस्वीर सिंह शौरण, ग्लोबल स्पेस हिसार से हमें ये इन्होंने व्हाट्सएप किया है। इनके दोनों जवाब सही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई शौरण साहब। और हमारे जो अगले श्रोता हैं दोस्तों, वो हैं उमेश सांगवान, गांव पैंतावास कला तहसील जिला चरखी दादरी से हमें इन्होंने ये जवाब भेजे हैं व्हाट्सएप के जरिए। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके भी दोनों जवाब सही हैं। और हमारे अगले जो श्रोता हैं वो हैं हमारे ये नियमित श्रोता हैं अक्सर, इनके दोनों जवाब अक्सर क्या, मैं तो यूं कहूंगी कि हर बार इनके दोनों जवाब सही होते हैं। आप हैं गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया, गुरदीप अवाना और बेबी कीरत अवाना। तो अवाना साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे ये अगले श्रोता हैं जिनके दोनों जवाब सही हैं, आप हैं जीवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण, आपके भी दोनों जवाब सही हैं। तो आपको भी भ्याण साहब बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहला जवाब जो हमें लिख भेजा है, ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और नियमित श्रोता हैं, आपके दोनों जवाब सही हैं। आप हैं नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, वेदांश जांगड़ा, आपको जांगड़ा साहब बहुत बहुत बधाई। और आपका जवाब हमें सबसे पहले मिला है और आपने अपनी पसंद का जिक्र किया है, आपने पसंद किया है सावन को आने दो फिल्म का ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नगमा, जो बेहद पसंद हमें भी है, लिखा है तुझे देखकर जगवाले को। बहुत ही प्यारा नगमा है, यशुदास की आवाज़ में ये नगमा है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी पसंद का ये गीत व्हाट्सएप के जवाबों के जरिए और हमारे आकाशवाणी हिसार से सुनने में बेहद आनंद आएगा। तो आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

0: दोस्तों, हमें तो आपके विचार, आपके ख्याल, आपके ख्वाब, आपकी चाहत सब बहुत खूबसूरत लगती है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम भी आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, फिलहाल आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर अपनी दोस्त क्षमा के साथ। कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे, बहुत जल्द लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर।
1: आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और दोस्तों अब वक्त हो चला है कि हम आपको किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी दें जिनके हौसले बुलंद हो और जिनका जज्बे को हम सलाम कर सकें। जी हाँ, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में आर्यनगर की बेटी ने फाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आर्यनगर की बॉक्सर सोनिया ने पहली बार एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये चैम्पियनशिप उज्बेकिस्तान में 1 मई से 15 मई तक आयोजित हो रही है। इसमें सोनिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। कोच मेवा सिंह ने बताया कि सेमीफाइनल कजाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ हुआ था। इसमें सोनिया ने कजाकिस्तान के बॉक्सर को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला उज्बेकिस्तान के साथ हुआ। इसमें उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। कोच मेवा सिंह ने बताया कि सोनिया की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि वो इस मुकाम तक पहुंची। सोनिया 15 दिन पुणे में प्रशिक्षण कैंप में ट्रेनिंग लेकर उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुई। सोनिया ने अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 40 किलो भार वर्ग में भाग लिया। कोच ने बताया कि सोनिया 16 मई को हिसार पहुंचेंगी, यानी आज ही के दिन। यहां आने के बाद मलिकपुर चौक से आर्यनगर तक शोभा यात्रा व सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इनके बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

दोस्तों, हम भी आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपके एहसास, आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिशें, आपकी तमन्ना कभी नहीं भूल सकते हैं। वो हमेशा हमारे साथ चलती हैं, आकाशवाणी हिसार के साथ चलती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत आकाशवाणी हिसार के साथ हमारे साथ यूं ही चलती रहे। और हम बात कर रहे थे आज के प्रेरक व्यक्तित्व, आज की शख्सियत में आर्यनगर की बेटी सोनिया की। तो आइए इनके बारे में और आपको बताते हैं। आर्यनगर से निकलकर बॉक्सिंग रिंग तक पहुंची सोनिया वर्मा की कहानी संघर्ष, हिम्मत और सपनों की मिसाल है। सोनिया की माँ अस्पताल में नर्स है, जबकि पिता बिजली का काम करते हैं। सोनिया बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज रही हैं। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने योग से खेलों की शुरुआत की, लेकिन मन ज्यादा नहीं लगा और कुछ समय बाद खेल छोड़ दिया। जिंदगी ने नया मोड़ तब लिया जब उन्होंने मोबाइल पर एक वीडियो देखी। छोटे बच्चों को मेहनत करते देख उसके अंदर फिर से खिलाड़ी बनने का सपना जाग उठा। इसके बाद उन्होंने अकादमी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में एथलीट्स और वेट लिफ्टिंग में हाथ आजमाया, लेकिन कोच मेवा सिंह ने उसमें बॉक्सर बनने की प्रतिभा देखी। पहले दिन जब ट्रेनिंग के दौरान उसे पंच लगा तो वो रो पड़ी, मगर कोच और परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे सोनिया ने खुद को मजबूत किया। आज सोनिया मेडल जीत लाई हैं। तो दोस्तों, सोनिया के इस जज्बे को, इस मेहनत को और इनके हौसलों को हम सलाम करते हैं।

दोस्तों, सोनिया के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और हौसले से देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही बहुत से दोस्तों इंसान हैं, ऐसे शख्स हैं, ऐसी शख्सियत है जो अपने लिए नहीं जीते बल्कि बेजुबान इन पक्षियों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो दोस्तों हर इंसान जीता आया है, लेकिन ये बेजुबान पक्षी जो बोल नहीं सकते, अपने एहसासों को बता नहीं सकते, अपने जज्बातों को बयां नहीं कर सकते, उनके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो आत्मा को, रूह को कितनी तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। ऐसे ही एक शख्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में लगातार बढ़ रही तापमान के बीच न केवल मनुष्य बल्कि बेजुबान पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। सामान्य तौर पर खुले में रखे कुंडों का पानी कुछ ही मिनटों में गर्म हो जाता है। इसके समाधान के रूप में करुणा चंद्र अशोक ने शहर में पहली बार पक्षियों के लिए जल सेतु नामक एक अनूठा प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें सोलर एनर्जी की मदद से 25 लीटर के मटके से स्टेप टू स्टेप 8 कुंडों में पानी का निरंतर रोटेशन होगा। 5 फीट ऊंचे लोहे के स्टैंड पर आधे फीट की दूरी पर मिट्टी के 8 छोटे कुंडे व्यवस्थित किए हैं। स्टैंड के नीचे 25 लीटर की क्षमता का मिट्टी का मटका रखा गया है जो प्राकृतिक रूप से पानी को ठंडा रखता है। यह सिस्टम सोलर पैनल से चलता है। संस्था के संघवी ने बताया कि मैं वर्षों से पक्षियों की सेवा कर रहा हूं। मैंने देखा कि खुले कुंडों में पानी महज 10 मिनट में गर्म हो जाता है जिसे पक्षी पी नहीं पाते। इसी वजह से हमने सोलर

ट्रांसपोर्टेशन का आइडिया आया। फिलहाल पिपलोद में पहला जल सेतु लगाया गया है। आने वाले दिनों में शहर के अन्य इलाकों में भी ऐसे स्टैंड लगाए जाएंगे। देखिए ना दोस्तों, अपने लिए हर इंसान जीता है, लेकिन इन पंछियों के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पंछी सुर में गाते हैं और वो सुर हमें बेहद लुभाता है और हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी रूह को तसल्ली देता है। तो आइए हम भी कुछ ऐसा नेक काम करें जो हमारी आत्मा को, हमारी रूह को अंदर तक, अंतरतम तक सुकून पहुंचा जाए।

दोस्तों, हम भी इन पंछियों की तरह मुस्कुराते हुए सुरों को, आपकी चाहत को, आपकी मोहब्बत को, आपकी ख्वाहिश को और आपकी तमन्ना को अपने साथ लिए जाते हैं। फिर से एक नए अंदाज के साथ मुस्कुराते हुए आपके पास लौट कर आने के लिए, तो आज अपनी दोस्त क्षमा को कार्यक्रम नमस्ते हिसार से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं,

0: could be.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा यह गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन्ना डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्राणी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफर पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था। चलिए इस गीत का ही एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलित दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना,

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी की आवाज शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी, और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, दस नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफी की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्श का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी। और आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो वे बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सब ने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से। और
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की सदाबहार सुरीली कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के सिपल हमारे साथ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर करिया

0: आधार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा है कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ की सुखना झील पर आयोजित इस वॉकेथॉन को प्रसार भारती के चंडीगढ़ में जोनल प्रमुख सुमित गोयल ने झंडी दिखाई। 2.5 व 5 किलोमीटर के इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी प्रमुख विकास भट्ट, समाचार प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा व कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह सहित आकाशवाणी परिवार के सेवारत व सेवामुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर मई माह में देश भर के केंद्रों में वॉकेथॉन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जन जन की वाणी आकाशवाणी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वर्ष 2027 से दिल्ली में नए सीएनजी और डीजल ऑटो रिक्शा का पंजीकरण बंद करने का निर्णय लिया है। कल आयोग की 28वीं पूर्ण बैठक में तय किया गया कि इसके स्थान पर केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ही मान्यता दी जाएगी। आयोग के अनुसार आगामी 1 जनवरी से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। इसके बाद 1 जनवरी 2028 से यह व्यवस्था फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत जैसे उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों में लागू होगी। फरीदाबाद के सड़क सुरक्षा समय सेवकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सड़क सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सौरभ शर्मा ने कहा कि स्वच्छ परिवहन की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं चिरायु योजना का लाभ सहज, त्वरित और बिना किसी बाधा के उपलब्ध करवाने के लिए रोहतक जिला प्रशासन ने आयुष्मान सारथी पोर्टल के माध्यम से विशेष नागरिक सुविधा पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पताल केवल उपचार केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि पात्र नागरिकों के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शक, सुविधा सहयोगी और योजना के सक्रिय क्रियान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। रोहतक के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल निजी अस्पताल संचालकों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि सभी अस्पताल अपने परिसर में आयुष्मान योजना की पात्रता, उपलब्ध चिकित्सा पैकेज, हेल्पलाइन नंबर, मरीज अधिकार और अन्य आवश्यक जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि नागरिकों को अस्पताल पहुंचते ही योजना की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि आयुष्मान सारथी पोर्टल अस्पतालों को नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सक्रिय साझेदार बनाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। निजी श्रोताओं, अब आपको विविध भारती के सदाबहार सुरीली कार्यक्रम सुनवाने के लिए ले चलते हैं।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब दे शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थी और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांदी ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यह धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही पोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं, पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है।

चिड़िया चहकती कलियां महकती फूल बिखिर जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी?

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैंप की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही है कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है, इन्होंने लालटेन की बात कही है। और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की, फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे, शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता है, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया, उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था, आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। श्रोता ने, एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
3: पल पल दिल के।
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
4: इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रही है कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है।

सवाल जरा गौर से सुनिएगा। गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता

कह रही हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ, कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहां, ये कैसा दस्तूर यहां। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, पहले उसी का जवाब।

कहिए बिल्कुल सही बात है। अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां, रोशनी कहां। ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारस मणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारस मणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता राय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़ी सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें, गाना मंजिल शब्द पर।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनिता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और एक और श्रोता कह रही है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था, इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको?

शोले फिल्म में जय भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें यह भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।

सही जवाब आया। बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरे लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर्मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर्मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के

माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया, याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला एक स्वयं, तुम अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोरदा कहा है कि किशोरदा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही है ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी

शामिल करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत देनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। ...2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
3: भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम।
0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले

0: सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
4: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है।

0: इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।

0: भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

चाचा जिंदाबाद। इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म डाक के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नजदीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना एमजी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

की मीठी सी नोकझोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ। सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है, खकल कौच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने, तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती
1: चाहेगी।
0: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी विविध भारती।
3: नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको साथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, मेरे अपराधों को मारने के लिए नहीं।
5: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन,
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है। लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
5: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
5: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
4: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है। यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
4: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
5: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
4: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है, किंतु आप संकोच न करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
5: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी संविदा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों

0: को विश्राम करा दो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं।
2: यहां तो
0: क्या रूप क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहनों की महक तो कुछ भी नहीं, पर लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
3: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
4: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
3: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
5: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूट जाएंगी।
4: लताएं भी रूटती हैं क्या?
5: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूटती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
4: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
5: क्या समझी है तू?
4: यही कि पिता कंद तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
5: वो कैसे?
4: तभी तो तू जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कंद कितने विवेकहीन है, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
5: अरे अनुसुईया, ओह सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
4: ए मुझे क्यों दोष दे रही है?
5: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
4: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, मैं पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
5: प्रियंवदा एक अच्छी बात कहूं?
4: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
5: परिहास ना कर।
4: अच्छा नहीं करती, बता।
5: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई।
4: नहीं तेरी तरह
5: फिर परिहास।
4: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
5: हाँ बता।
4: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
5: थत, तेरा तो सिर घूम गया है।
4: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
5: अच्छा,
4: पिता कर्ण कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
5: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
3: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
6: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे।
3: अरे अरे मेरा पीछा छोड़,
6: भाग,
3: अरे भाग ना,
6: भगाओ ना इसे। क्या
4: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
3: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
4: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
6: अरे बचाओ बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए। पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
4: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
3: आपके आते ही भाग भी गया।
4: आप खड़े क्यों हैं आर्य, विराजी ना।
3: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
0: नहीं नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
4: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
3: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
0: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी।
5: ना तुम लोग बैठो,

0: भी, अब बैठ भी जा।
1: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
0: हम लोग अपने अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य। किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
2: मैं अब क्या बताऊं इन्हें? मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रम को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
0: आज यदि पिता कर्ण यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
2: और ही ढंग से?
1: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
3: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
2: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
0: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
1: बहुत मीठा है इसका गला,
0: करती रहती है सबका भला,
1: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
0: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
1: कुलपति कणु की सबसे लाडली बिटिया है।
2: किंतु कुलपति कणु तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
0: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य। वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
2: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
1: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन ढूंढता हुआ दिखाई देने लगा।
2: फिर
1: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
2: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
0: क्या आर्य?
2: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
0: ये तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने

0: ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था, इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
1: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
0: आप
1: ये लीजिए।
0: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है, आपके पास ये अंगूठी?
1: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए, आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
1: मैं आभारी हूँ।
2: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
1: लगता है मेरी खोज के निकले सैनिक तपोवन में खुश आ रहे हैं।
0: हे भगवान, अब क्या होगा?
2: सावधान, वन के जीव जंतुओं के दान के रूप में एक उच्छृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
0: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
3: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
1: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
0: चलो चलो शकुंतला। हाँ हाँ चलो
1: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नींद भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो हम मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज।
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
2: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
2: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
2: विशेष बात?
1: हां, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
2: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
3: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
3: जो आज्ञा महाराज।
4: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।

0: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूँ मुनिजन।
2: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कर्ण इस समय यहाँ नहीं है।
0: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
2: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
3: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
3: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
0: आर्य की जय हो।
3: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
3: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
3: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश।
0: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
0: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, खुद समझ में नहीं आता माधव्य।
2: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
2: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
2: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
2: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हां, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
2: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
2: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा।
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: कितनी प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला। क्या कह रही हो अनसुया?
1: प्रियम बता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रेमवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है। इसी से पूछकर देखे।
1: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
2: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
2: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
0: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो? इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
2: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
1: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
2: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाली

0: वो राजेश जी जब से इन आंखों में समाए हैं तभी से
1: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
0: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
1: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला। समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
0: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
1: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
1: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
1: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: ए, मुझे एक उपाय सोचा है।
1: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
1: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
1: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
1: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? तो मैं लिख दूंगी, किंतु
1: क्या शकुंतला,
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
1: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाय पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: ओ, ओ, ओ पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर,
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
2: अच्छा,
3: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, मैंने
2: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
3: हाँ, अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
2: जी जी,
3: उनका नाम था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो हम शो करते षणमुखानंद में, बंबई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
2: जी,
3: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
2: जी, जी, जी।
3: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके घर में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं, वो ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ बुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
2: अन्ना जी मतलब श्री रामचंद्र
3: जी, तो षणमुखानंद में शो था।
2: हाँ।
3: और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाए दे रहे थे।
2: अच्छा।
3: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठे।
2: अच्छा।
3: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
2: हाँ।
3: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
2: जी, जी,
3: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में।
2: अच्छा।
3: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
2: Okay.
3: एक समय काली पांच सुर है, तो हाँ, खर्च के जो सुर होते हैं,
2: हाँ,
3: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचा ऊंचे सुर में गाना चाहती थी, क्योंकि तब तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
2: हाँ।
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
2: जी जी,
3: बस ये दोनों में फर्क था, संजी और अन्ना जी।
2: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कंपोजिशन है,
3: बहुत,
2: उसमें
3: बहुत।
2: से कौन सा कंपोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ। तो समझ में आता है।
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं वहाँ, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी में दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: मैं
1: तो मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका असल स्टूडियो था शशांक लालचंद चारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ। हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आप आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशीत त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, और नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: निर्मला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको ज्यादा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ा पिकला हम वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो बस उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रे का फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था, कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था मेटल का, तो उसको मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ,
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा
1: है, ऐसा लगता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ,
0: अच्छा,
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा,
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं एक साथ लगोपाट पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद ये कोडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ का गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात,
0: अच्छा, अच्छा।
1: और जहां तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी
0: जी, जी।
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा लगता, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
0: पसंद आता।
1: पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्म में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: रफी साहब का गाना एक दो गाना है, सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
0: जी, जी,
1: तो वो आगे आके उनको उसको एक मतलब ना मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ,
1: रफी साहब बोले शुरू करते थे
0: जी।

भी रहेगा, फिर जानी इसकी और परसों भी रहेगा और तरसों भी। क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था।

0: उर्मिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है।
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, हाँ, ये होता है, ये छपका दोष आता है उनके ऊपर, इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, मैं उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा, ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो भी लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरा शो देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में

0: शालीनता हो,
1: शालीनता हो
0: तो सवाल ही नहीं, वो एक्स्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मिले, लेकिन अभी हाँ। ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के, होते लिए थे
1: कंपनी के लिए किसी हाँ, हाँ। कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
0: अच्छा।
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल स्टेट मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी, जी।
1: बहुत सारी कंपनी उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी। प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है। ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और उनकी विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा।
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा।
1: मेरी राय होगी, वो शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
0: जी,
1: इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा।
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचने गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखे सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो नंदुरवार करके गांव है छोटा सा दुलिया के पास, तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो जिसे आते हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो, आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गा नहीं सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा, म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए पुराने जो गाने बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
0: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है,
1: उनके दिमाग में
0: वैसा वो सुनना चाहते हैं।
1: अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरट टरट वो आना ही चाहिए, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को।
0: जी, ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
1: सही बात,
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए जिसका से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक।
0: जी।
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज चार साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से तो बदली हो जाएगा, नाजी जायजे तो

0: जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल ऑन शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं। हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी होगा। नहीं तो ठीक है कि उनको मैं सब गाने मेरे पुराने वाले में दो तीन थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
1: जी,
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी,
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है। तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल। तो एक रिहर्सल और
1: जी,
0: लेकिन
1: जी
0: फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको, शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मनके बोलूंगी, विनय मनके,
1: विनय मान,
0: विनय मनके
1: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी, जी
1: तो,
0: और उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ, बहुत सारे जिंगल गाए उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्मर होता है वो था। बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा आया
1: बहुत अच्छे।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, बोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, तो ये बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता।
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको, बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं, कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए, पड़वा के शो, वसंतला पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विराट राव देशमुख, सुशील कुमार जी, शिंदे, सब आके गए, वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी,
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ।
0: प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा का आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भार्गव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं आए। फिर मुझे उन्होंने पूछते कि कसे भाव तुम्हें अच्छे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराएगा, पर गायला उभर आए तो कस करता है, मुझे अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं, कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ाला पिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन पाहुन।

0: அருகே படால பிக்கலை அம்பா, அளவை படால பிக்கலை அம், ஒனிட்டு வக படால பிக்கலை அம்பா. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी, पर फिर ये गाना तो वंशोर होता ही था
1: जी जी.
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ, तो पड़ाल पिला मैं बोलूंगी, अम्बा बोलेंगे.
1: अच्छा.
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर, अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए, इतना जोर से. फिर जोर से एकदम जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था. उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह वा.
0: उनको भी शायद उतारा
1: जी. प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: थी. हाँ.
1: अपनी लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी, जरूर.
0: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे.

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया, अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं
1: कोशिश
0: कि भाई
1: की।
0: क्या
1: अरे बाप रे,
0: हमारा
1: गुजराती
0: नसीब।
1: तो वही गाना था।
0: हाँ,

0: ये गाना बहुत उधर ज्यादा, और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी है वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर ना गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी, जी,
0: तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे।
1: जी, जी,
0: तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें।
1: अच्छा?
0: जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ?
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक एक अवधि जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पेपाड़ा लपिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो ही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके।
0: हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पधारे
1: और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि

0: उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
1: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

अभी आप भारती, ये आकाशवाणी हिसार है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति, प्रस्तुत है संदेश आपकी, गीत हमारी। ये कार्यक्रम आधारित रहेगा व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेशों के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं संदेश आपके, गीत हमारे, आकाशवाणी हिसार की इस प्रस्तुति को।

तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, भावनाओं की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। कभी कोई याद बनकर दिल में उतर जाता है तो कभी कोई रिश्ता गीतों के सहारे खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। कुछ लोग दूर रहकर भी दिल के बेहद करीब रहते हैं। इन्हीं भावनाओं को सुरों में पिरोकर हम लाए हैं आपके भेजे हुए प्यारे प्यारे संदेशों के साथ आपकी पसंद के सदाबहार गीतों से सजा हुआ कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। और आज के इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। तो आइए श्रोताओं, इस सरगमी सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पहले गीत के लिए हमारे कौन कौन श्रोता शामिल हो रहे हैं। तो हमारे श्रोता रहेंगे शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। इन्हीं तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ते हैं वराली मुंबई से हमारे श्रोता रहेंगे नवाब खान, निशरत खान, मास्टर अजहर खान और आजिम खान। इन तमाम श्रोताओं के साथ वाइल्ड फील्ड बेंगलुर से श्रोता रहेंगे भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण संस्कृति और पौरुष। और नायते नजर करते हैं हमारे अगले श्रोताओं की ओर, श्रोता रहेंगे गांव जेवरा जिला हिसार, वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र, मनोज और तमाम परिवार के सदस्य। और लीजिए मनदीप सिंह, नसीब, मीनू, बबलू, शगुन शेठी, काली, विनू घोलू और इनकी दादी जी, ये तमाम श्रोता रहेंगे खरक पूनिया

प्यार से। दुर्गा कॉलोनी जिला हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ उत्तर प्रदेश से श्रोता रहेंगे। गंज डुंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन नाफरीदी, सहारनपुर यूपी से राधा नामदेव। और लीजिए श्रोता शामिल हो रहे हैं गांव सेरडा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, सोनू शर्मा और लीलाधर शर्मा। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और समस्त खुशदिल परिवार के सदस्य। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर। और शामिल कर लेते हैं पहले ही गीत के लिए ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के श्रोताओं की इस फरमाइश को। राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजूर, रंजना, वंदना, प्रियल्लोर, दिव्यांशी विश्वकर्मा। तो श्रोताओं कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं 1991 में आई फिल्म। गीत श्रोताओं सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुना जाएगा, और जब शब्दों में मासूमियत हो तो धुन स्वतः ही अपनी ओर खींच लेती है। तो एक खूबसूरत एहसास को आइए सुनते हैं। रंग अगर मोहब्बत के हों तो जिंदगी भी हसीन लगने लगती है, और दिल में उम्मीद हो तो हर मौसम रंगीन लगने लगता है। तो सुनते हैं 1991 में आई फिल्म हिना का वो गीत जिसके गीत को लिखा रविंद्र जैन साहब ने, संगीत भी तैयार किया रविंद्र जैन साहब ने, और स्वर रहेगा भारत रत्न से अलंकृत स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का।

1991 में आई हिना का श्रोताओं आपने खूबसूरत गीत सुना। आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारी व्हाट्सएप पर। ये कार्यक्रम जो है आधारित है नए श्रोता। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें भेजिए अपना संदेश, और भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा टेलीफोन नंबर। व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9729253272। फोन नंबर एक बार पुनः सुनिएगा 9729253272। तो देर मत कीजिए श्रोताओं, आप भेजिए हमें संदेश और हम उसे भेजेंगे मोहब्बत के साथ आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। और लीजिए संदेश अगले गीत के लिए। हम तक पहुंच गए हैं गांव चौधरीवास जिला हिसार से। हमारे श्रोता रहेंगे राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रियांशी, और इनके मित्रगण रहेंगे विनोद, ममता पनिहार से, कविता, साहिल, ये तमाम श्रोता। और इन्हीं श्रोताओं के साथ लीजिए अब शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को गांव चौधरीवास जिला हिसार से ही मांगेराम सतूड, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ आकाशवाणी के 90 सालों के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हम तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम श्रोताओं का। और इसी कड़ी में लीजिए गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से हमारे श्रोता रहेंगे स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, नविराज सिंह और इनके पोते गुरनार सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और लीजिए मिहिर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता जुड़ते हैं कार्यक्रम से। अभिजीत गवानकर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, प्रणीता गवानकर, सिद्धांत और इन सभी के लाडले टुक टुक गवानकर। और कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं मरहबा दरवाजा एटा से नबी हसन नब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इष्टत प्रवीण कार्यक्रम से जुड़ते हैं। दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। और लीजिए जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और वेलेस डिकेस्ट्रो कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। नई बस्ती गंज डुंडवारा यूपी से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी साहब कार्यक्रम में शामिल है। गंज डुंडवारा यूपी से ही हमारे अन्य श्रोता शामिल हो रही हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमशुल कमर राही।

नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता रहेंगे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए अब श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 संघ मित्रा श्रोता संघ के ये श्रोता रहेंगे पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार और अर्पिता। साथ ही साथ गांव फरांसी जिला हिसार से हमारे श्रोता जुड़ते हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। जिला जींद से हमारे श्रोता रहेंगे प्रयाग, प्रीति, दक्ष, केशव और मनदीप। इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। श्रोताओं, गीतों की मिठास कुछ ऐसी होती है कि बरसों बाद भी दिल उन्हें उसी अपनेपन से सुनता है जिस समय में इन धुनों को तैयार किया गया होगा। संगीत श्रोताओं वो एहसास है जो बीते लम्हों को शायद फिर से जीना सिखा दे। आइए सुनते हैं 1972 की बहुत चर्चित फिल्म शोर का बेहद मधुर गीत, सुरीली आवाजें मुकेश जी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत दिया उस समय के मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। गीत फिल्माया गया भारत कुमार यानी मनोज कुमार साहब और अभिनेत्री जया बच्चन जी पर।

आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचेगा बस इस अंतराल के बाद।

20. अंतराल के बाद पुनः आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे के अंतर्गत। श्रोताओं, नए श्रोताओं से आग्रह कि वे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारा पता यानी हमारा फोन नंबर। अभी आप भेजिए अपना संदेश और हम करेंगे शामिल आपको। फोन नंबर रहेगा 9729253272। आज के इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। श्रोताओं, अंतराल से पहले आपने सुना लता जी और मुकेश जी के गाए गीत को। 1972 में आई फिल्म शोर का गीत था। और ये अब रुक करते हैं 1983 की ओर। एक यादगार गीत आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बेकरार है और बेताब हैं हमारे वे तमाम चाहने वाले। और इत्तफाक देखिए कि बेताबी जितनी सुनने की है उतनी ही बेताबी हमें भी गीत सुनवाने की है। बहरहाल फिल्म में रहेगी बेताब शबीर कुमार और लता जी की दिलकश आवाजें, आर डी बर्मन साहब का संगीत, आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा। और श्रोताओं, मोहब्बत जब पहली बार दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है तो हर एहसास खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। और श्रोताओं, उन भावनाओं को उन एहसासों को यदि सुरों का साथ मिल जाए तो एक यादगार गीत जन्म लेता है। और ऐसा ही एक गीत आनंद बख्शी साहब की कलम से निकला कि कुछ धुनें दिल में ऐसे बस जाती हैं कि उन्हें सुनते ही पुरानी यादें खुद ब खुद मुस्कुरा उठती हैं। बहरहाल हमारे तमाम श्रोताओं के चेहरे पर खुशी झलक रही होगी क्योंकि वे शामिल हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। इसी क्रम में हमारे श्रोता रहेंगे पटियाली रोजगंज गजन डुडवारा यूपी से इरफान कुरेशी, रिहान कुरेशी, फैजान कुरेशी, शहादत कुरेशी। और लीजिए सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हमारे श्रोता रहेंगे अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। मानपुर साबिक जिला मुरादाबाद से श्रोता जुड़ेंगे शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। और इन्हीं श्रोताओं के साथ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगवाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सदस्य। बुलढाणा वार्ड शिंगी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। इस्लामपुर महाराष्ट्र से बुलढाणा से ही रहेंगे श्रोता सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार। चक 5 एमडी पत्रोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से श्रोता जुड़ते हैं। लीजिए मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से श्रोता रहेंगे रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और

गुरशब्द सिंह राहुल हिंदराज रेडियो श्रोता संघ तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता जुड़ते हैं। बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट और हरिभाऊ बिड़वे, इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबली पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राशेश और श्रीमती शीतल राजेश। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए अब शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को। देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डोली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर, ये तमाम श्रोता रहेंगे कबीर रेडियो श्रोता सन डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी और ईशान सैनी कार्यक्रम में शामिल हो रही है। बेरडी मध्य प्रदेश से श्रोता रहेंगे हुकम कर्मकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तन्नु कर्मकर। तो आइए सुनते हैं 1983 में आई बेताब फिल्म का ये बेताबी भरा गीत। आनंद बख्शी साहब की रचना, आर डी बर्मन साहब का संगीत और शब्बीर कुमार और लता जी की दिलकश आवाजें।

1983 1983 में आई सुपरहिट फिल्म बेताब का हमारे तमाम बेताब श्रोताओं ने गीत का लुत्फ उठाया। आप सुन रही हैं व्हाट्सएप के संदेशों पर आधारित संदेश आपके गीत हमारे, और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। नए श्रोताओं नोट कीजिए, हमारा फोन नंबर 9722523272, 9729253272। और लीजिए अब हम शामिल करते हैं हमारे अन्य श्रोताओं को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब आए हमारा नंबर। तो लीजिए उनका नंबर आ गया है, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से हमारे श्रोता रहेंगे श्री सुधाकर।

राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वद देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख, इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे मंडी आदमपुर जिला हिसार से किरण और इनके परिवार के तमाम सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमारे श्रोता कार्यक्रम से जुड़ते हैं। कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहान निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय कार्यक्रम से शामिल हो रही हैं। सहारनपुर से हमारे श्रोता रहेंगे राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और लीजिए बघेरा दुर्ग से ये संदेश हम तक पहुंचा है संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। इन तमाम श्रोताओं के साथ सहारनपुर से श्रोता जुड़ेंगे सुरेश नारंग, आशा नारंग और सोनाली नारंग। और लीजिए नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रही हैं टेनिस एकेडमी हिसार, हिसार टेनिस एकेडमी हिसार से ही हमारे श्रोता रहेंगे अंश, अनु जैन, मंजू वर्मा, आराध्या, हिशान पंघाल, युवान और इनके कोच प्रशांत यादव। तो सुनते ही मैं तमाम श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाजें आप सुनेंगे इस गीत में। अनु मलिक साहब का संगीत रहेगा, हसरत जयपुरी साहब ने इस खूबसूरत गीत को लिखा, फिल्म रहेगी श्रोताओं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और श्रोताओं जब प्यार का एहसास खूबसूरती के सांचे में ढल जाता है तो दिल खुद ब खुद मुस्कुराने लग जाता है, किसी की आहट ही धड़कनों को तेज कर देती है। जब कोई दिल के करीब आने लगता है तो हर पल और भी हसीन नजर आने लगता है। तो आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की दिलकश आवाजों में हसरत जयपुरी साहब का लिखा ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार और हम जरा थोड़ी सी देर में मिलते हैं आपसे। इंतजार कीजिए अगले गीत का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

90 सालों की यादें अब फिटनेस और फन के साथ। आकाशवाणी हिसार लेकर आ रहा है मैराथन 17 मई सुबह 6:15 बजे, जहां होगा म्यूजिक, जुम्बा, एरोबिक्स और फुल एनर्जेटिक वाइब्स। तैयार हो जाइए रन करने, एंजॉय करने और 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी सेलिब्रेट करने के लिए। आकाशवाणी हिसार, हर जनरेशन के साथ।

अंतराल के बाद पुनः सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत। और आइए श्रोताओं, अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर। और श्रोता, अगले गीत के लिए हमारे केंद्र से जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ नगर जिला नांदेड़ से आरती छोटी बबली रूपाली वंदना धुले और सरुबाई धुले मराठवाड़ा से। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे श्रोता। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, डॉक्टर अफचल मलिक, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और श्रीमती सुनीता साहनी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी बंदूरकर, सदानंद बंदूरकर, कुमार गौरव, आरव और अर्पिता, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी कार्यक्रम से जुड़ते हैं। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के तमाम सदस्य। बागपत उत्तर प्रदेश से ममता धिंग्या और कुणाल धिंग्या कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ शर्मा कॉलोनी जिला जींद से हमारे श्रोता रहेंगे मीनू, अक्षिता, रक्षित, आरव, अंकित और परिवार के तमाम सदस्य। इन तमाम श्रोताओं के साथ शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को जो लिख भेज रहे हैं हमें अपना संदेश। पद्मा टोकी जिनेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। गढ़ के नगर यवतमाल से हमारे श्रोता जुड़ेंगे लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, प्रतीक्षा, शैलेश, स्वप्निल, रक्षता और रेयांश लोखंडे। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोताओं अब शामिल करते हैं हमारे अगले श्रोताओं को जो जुड़ेंगे पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और इन श्रोताओं के साथ संदेश हम तक पहुंच रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का, जोधपुर राजस्थान से सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड से जुड़ेंगे श्रोता रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी चौहान। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, सितारा बेगम, मोहम्मद इकबाल फरीदी, नसरीन प्रवीण, रोजी प्रवीण, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। और इन्हीं श्रोताओं के साथ सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए हम तक जितने संदेश श्रोताओं आज पहुंचे हैं हमने सभी को शामिल किया है ये कार्यक्रम की खास बात। और लीजिए गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया, ये तमाम श्रोता कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। और इन तमाम श्रोताओं के साथ शत प्रतिशत श्रोताओं को शामिल करने के बाद कार्यक्रम की ये अंतिम फरमाइश रहेगी श्रोताओं, शब्दों में जहां अपनापन है और एहसासों में खूबसूरत सा सुकून है, पुराने गीतों की श्रोताओं यही एक

0: अस्बात है, इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है कि हर बार सुनने पर दिल को एक नया एहसास दे जाते हैं ऐसे गीत। अब जो गीत सुनेंगे वो लिया है वर्ष 1970 में आई एक सुपरहिट फिल्म प्रेम पुजारी से, जिसके गीत को सजाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपने सुरों से। खूबसूरत गीत के शब्दों को लिखा पदम श्री गोपाल दास नीरज ने अपनी कलम से और संगीत तैयार किया एसटी बर्मन साहब ने, यानी सचिन देव बर्मन ने, और इस गीत को पर्दे पर जीवंत किया वहीदा रहमान और हर दिलों की धड़कन रहे अपने समय के सुपरस्टार देवानंद साहब ने। तो आइए सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत और कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति रहेगी। श्रोताओं
1: जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

श्रोताओं, अब कार्यक्रम समेटने की अपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ को दे अनुमति। और जाते जाते श्रोताओं ये कहेंगे कि दिल बड़ा रखिए साहब, बातें तो हर कोई बड़ी कर लेता है। श्रोताओं, गीत सिर्फ धुन से नहीं बनते बल्कि दिलों को जोड़ने का एक खूबसूरत जरिया भी बनती है। सुनते रहें आकाशवाणी हिसार और भेजते रहें अपना प्यार और अपना स्नेह आकाशवाणी हिसार के लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफेक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत में अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी

मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी हिसार है। लीजिए, समय है कार्यक्रम रूपरेखा का, तो जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 6:30 पर श्रोता युवा उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा जिंदगी अनमोल है और भक्ति संगीत का समय रहेगा शाम 6:20। शाम 7:00 कृषि संबंधी जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी। आज का विषय आप सुनेंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कपास की पछेती बिजाई पर बातचीत को और 7:30 पर सुनेगा प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम और छात्रवृत्ति योजनाएं। कार्यक्रम रहेगा महारे गांव, समय रहेगा शाम 7:30। रात्रि 8:00 सुनेगा परिक्रमा और 8:30 पर खुलाकाश कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसके अंतर्गत सुनेगा कार्यक्रम में एक फिल्म से।

राष्ट्रीय हिंदी समाचार आप सुन पाएंगे रात्रि 8:45 पर। राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे रात्रि 9:00 और 9:15 से रात्रि 10:00 तक। सुनिएगा श्रोताओं विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को।

रात्रि 10 बजे आकाशवाणी हिसार पर सुनिएगा पुनः प्रसारण हेलो हिसार का, और राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे रात्रि 11 बजे। 11:05 पर होंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी हिसार है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के अपने परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का मौका देने का फैसला किया। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने 12वीं कक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री आदि बद्री नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की और आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा सुखना झील पर वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी की वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाईं। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए अन्य 2 आरोपियों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बोर्ड ने कहा है कि जो विद्यार्थी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी 19 से 22 मई के बीच अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रूपये है। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पूर्ण मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पाई गई समस्याओं के सत्यापन

0: और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच जमा किए जा सकते हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सरकारी विद्यालयों के 57 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। चंडीगढ़ में पंजाब लोक भवन में आयोजित प्रतिभाशाली छात्र सम्मान समारोह के दौरान श्री कटारिया ने चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धियों ने चंडीगढ़ को गौरवान्वित किया है तथा सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में निरंतर बढ़ रही शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 12वीं के परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालयों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.25 रहा, जो राष्ट्रीय औसत 85.2% से 2.05% अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष 29 विद्यार्थियों के मुकाबले 57 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए और 348 विद्यार्थियों ने 90% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 225 थी, जो शैक्षणिक परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार, उभरती तकनीकों और आधुनिक शिक्षण अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सरस्वती उद्गम स्थल श्री आदिबद्री नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की तरक्की की कामना की। उन्होंने इस मौके पर हरियाणा के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। हिसार में भी आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि देशभर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है, पूरे देश के अंदर है। हमारे जो पार्टी के जो मंडल सदर से लेकर के जितने भी पदाधिकारी है, वो सारे बैठ करके और सरकार की नीतियों पे, सरकार के जो कार्य करे, पार्टी के अंदर कैसे अनुशासन चाहिए, क्या क्या हमारी योजनाएं है, उस पर चर्चा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसीलिए ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है।
0: तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान और इसराइल ईरान युद्ध के बाद में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, उसके कारण इस तरह के फैसले लेने पड़े हैं। श्री गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा अपना काफिला कम करने का काम किया गया है। उन्होंने भी अपने काफिले से पायलट गाड़ी को हटाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम ईंधन खर्च करने की जो अपील की है, उसका सभी को एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ की सुखना झील पर आयोजित इस वॉकेथॉन को प्रसार भारती के चंडीगढ़ में क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने झंडी दिखाई। 2.5 व 5 किलोमीटर के इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी प्रमुख विकास भट्ट, समाचार प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा व कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह, पत्र सूचना दफ्तर के प्रमुख प्रीतम सिंह, दूरदर्शन समाचार प्रमुख आकांक्षा सहित आकाशवाणी परिवार और सहयोगी कार्यालयों के सेवारत व सेवामुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। देशभर में किए जा रहे इन आयोजनों का उद्देश्य जन जन की वाणी आकाशवाणी की बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। हरियाणा पुलिस की नई आईटी पहल के तहत पहली बार प्रदेश में नवनियुक्त कांस्टेबल के जिला व यूनिट आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की गई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कंप्यूटर पर एक क्लिक के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया। इस पारदर्शी प्रणाली के तहत 5100 पुरुष एवं 1797 महिला कांस्टेबल से ऑनलाइन माध्यम से उनकी पसंद पूछी गई, ताकि उन्हें उनकी मेरिट अथवा वरिष्ठता के अनुसार उनकी पसंद के जिले व यूनिट आवंटित किए जा सकें। आज शनिश्चरी अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा व देश के अन्य राज्यों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और जरूरतमंदों को काले तेल, उड़द की दाल, काले कपड़े, छाता, जूते चप्पल का दान किया। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे और सरोवर के तट पर सरसों के तेल के दीपक जलाए गए, दान पुण्य किया। पंडित राकेश

0: स्वामी ने बताया कि आज ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का महासंयोग बना है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। पलवल स्थित जाट धर्मशाला में आज जाट समाज विकास समिति द्वारा चौपाई महामेले का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने महामेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम एवं पूर्व विधायक दीपक मंगला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हरियाणा सरकार द्वारा स्वच्छता सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत संचालित महावारी स्वच्छता मिशन को जींद जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। आंगनवाड़ी निरीक्षक दर्शना देवी ने बताया,
1: हमारे आंगनवाड़ियों में सभी में सैनिटरी पैड की स्कीम चालू की गई है, जिससे कि औरतों को साफ सफाई के बारे में भी जागरूक किया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहें और अच्छी रहें। और सभी बीपीएल परिवार में जितनी भी महिलाएं 10 से 45 वर्ष की होती हैं, सभी को सैनिटरी पैड दिए जाते हैं, जिससे उन्हें सैनिटरी पैड बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के अपने परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का मौका देने का फैसला किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी हिसार है। आइए सुनते हैं प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत। ये आकाशवाणी हिसार है FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए श्रोताओं, अब समय हुआ है आकाशवाणी हिसार पर कार्यक्रम युवा उमंग का।

आकाशवाणी हिसार सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत आप तमाम श्रोताओं का अभिनंदन स्वागत। आज का युवा उमंग का ये अंक लेकर उपस्थित हूं। इस सफर में आपका हम सफर, मैं शिवानंद वाशिष्ठ। श्रोताओं, आज एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने जा रही हैं जो आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। जी हां श्रोताओं, आज का विद्यार्थी बहुत दबाव में जी रहा है। ये जीवन जो है श्रोताओं, ये जिंदगी जो है, ये बहुत अनमोल है, बहुत खूबसूरत है। अच्छे नंबर लाने की चिंता, प्रतियोगिता परीक्षाओं का दबाव, परिवार के सदस्यों की उम्मीदें और निसंदेह भविष्य का डर, कई बार ये

तनाव श्रोताओं इतना बढ़ जाता है कि बच्चे खुद को अकेला समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखिए कि परीक्षा जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं फिर से अपनी बात कह रहा हूं, परीक्षा जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। हार जाना गलत नहीं, लेकिन उम्मीद खो देना सबसे बड़ी हार है। आज के इस कार्यक्रम युवा उमंग में हम बात करेंगे उम्मीद की, आत्मविश्वास की और जिंदगी की खूबसूरती की, और साथ ही आपका मनोरंजन भी करवाएंगे, गीत भी सुनवाएंगे। बहरहाल कार्यक्रम के आगाज में आइए पहले सुनते हैं ये खूबसूरत संदेश देता हुआ गीत, और फिर बात करेंगे उम्मीद की, आत्मविश्वास की और जिंदगी की खूबसूरती की।

श्रोताओं, आपने सुना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आनंद बख्शी साहब ने अपने अनुभव की कलम से इस गीत को शायद लिखा। और श्रोताओं, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अगर नंबर कम आए या परीक्षा अच्छी न हो पाई तो सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। लेकिन सच ये नहीं है श्रोताओं, जिंदगी में सफल होने के हजार रास्ते होते हैं। एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा खुला भी है। जरूरत है सकारात्मक सोच की। हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर किसी की पढ़ाई करने का तरीका अलग है, हर किसी की पढ़ाई की शक्ति अलग है। किसी की कला, किसी को खेल में, किसी को संगीत में, किसी को लेखन में, या फिर कोई और हुनर, हर एक बच्चे में अपना एक हुनर है। श्रोताओं, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी और वो खुद को हमेशा क्या समझेगी, फिर कमजोर ही तो समझेगी। यानी वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रही, यानी वो पेड़ पर चढ़ने में सक्षम है ही नहीं, और अपने आप को ये समझती रहे कि मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से कभी मत कीजिए। आप जैसे हैं बेहद खास हैं, ये बात अपने मन में बैठा कर रखिए। अगर कभी मन भारी भी लगे तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, शिक्षकों से, अपने दोस्तों से खुलकर बात कीजिए। चुप रहना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। श्रोताओं, एक असफल परीक्षा आपके सपनों का अंत नहीं कर सकती। इतिहास गवाह है, कई महान लोग पढ़ाई में साधारण थे, बल्कि बहुत साधारण थे, लेकिन जिंदगी में असाधारण बने। अब समय है श्रोताओं एक और खूबसूरत गीत का, और उस गीत के बाद बातचीत का ये

90 सालों की यादें अब फिटनेस और फन के साथ। आकाशवाणी हिसार लेकर आ रहा है मैराथन 17 मई सुबह 6:15 बजे, जहां होगा म्यूजिक, जुम्बा, एरोबिक्स और फुल एनर्जेटिक वाइब्स। तैयार हो जाइए रन करने, एंजॉय करने और 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी सेलिब्रेट करने के लिए। आकाशवाणी हिसार हर जनरेशन के साथ।

श्रोताओं, अंतराल के बाद पुनः आप सबका स्वागत कार्यक्रम युवा उमंग में। आज बात कर रहे हैं आपसे, जिंदगी अनमोल है इस विषय पर। श्रोताओं, देखा यह गया है कि आजकल सोशल मीडिया ने भी बच्चों पर एक अलग सा प्रेशर बना रखा है, दबाव बना रखा है। हर कोई दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगता है और शायद यही भूल उन्हें कुछ ना कुछ जिंदगी में पीछे ले जाती है। ये याद रखिए श्रोताओं, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी हमेशा पूरी तरह सच नहीं होती। दूसरों की चमक देखकर उदास मत हो, हर सितारा अपने समय पर चमकता है, ये तय है, ये निश्चित है। श्रोताओं, तनाव कम करने के लिए थोड़ा सा आराम कीजिए, संगीत सुनिए, टहलने जाइए, अपने मन की बात किसी अपने से कहिए और सबसे जरूरी

की गलती होने पर खुद को माफ करना सीखिए। माता पिता से भी छोटी सी विनती, श्रोताओं की बच्चों से नंबरों से ज्यादा उनका हाल पूछिए। उन्हें यह एहसास दिलवाइए कि उनका जीवन किसी रिपोर्ट कार्ड से कहीं बहुत ज्यादा कीमती है। बच्चों को सिर्फ सफल नहीं, खुश भी बनाइए। श्रोताओं, जिंदगी सही मायने में खूबसूरत है। इसमें मुश्किलें भी आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, ठोकरें भी खानी पड़ेंगी, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगर आज का दिन अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खराब है। ठोकरें इंसान को गिराने नहीं, संभल कर चलना सीखने का आदि बनाती है। श्रोताओं, याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए और इस दुनिया के लिए बहुत कीमती है। बात कीजिए जब भी मन उदास हो, परेशान हो, लेकिन हार मत मानिए। श्रोताओं, एक छोटा सा उम्मीद का दीपक घने अंधेरे को भी मिटा सकता है, ये बात हम सब जानते हैं। तो बस उस उम्मीद के अपने उस दिए को बुझने मत दीजिए। और श्रोताओं, इत्तेफाक देखिए कि आज दिन में मैं कहीं से आ रहा था और एक होर्डिंग कहीं लगा हुआ था और उस पर क्या खूबसूरत बात लिखी हुई थी और मैं वो आपसे साझा करने जा रहा हूं। जब हौसला ठान लिया है उड़ान का, जब हौसला ठान लिया है उड़ान का, तो फिर क्या कद देखना आसमान का। तो इस बात को अपने जहन में रखिए श्रोताओं, और उम्मीद के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, परीक्षाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जिंदगी सबसे अनमोल है, सबसे बेशकीमती है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है। तो मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ जुड़े रहिए और जिंदगी को प्यार से जीते रहिए।

0: तो श्रोताओं, आज के इस युवा उमंग कार्यक्रम को अब समेटने की दी इजाजत, और याद रखिए कि खुद पर भरोसा, स्वयं पर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है। मुस्कुराते रहिए और आकाशवाणी हिसार सुनते रहिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

90 सालों की यादें अब फिटनेस और फन के साथ। आकाशवाणी हिसार लेकर आ रहा है मैराथन 17 मई सुबह 6:15 बजे, जहां होगा म्यूजिक, जुम्बा, एरोबिक्स और फुल एनर्जेटिक वाइब्स। तैयार हो जाइए रन करने, एंजॉय करने और 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी सेलिब्रेट करने के लिए। आकाशवाणी हिसार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम युवा उमंग, ये आकाशवाणी हिसार है FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कृषि संबंधी जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम किसान वाणी।

0: सुरेश भाई राम राम।
1: और भाई आपको भी और कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सारे बन भाई ने
0: राम राम, राम, राम।
1: खेती बाड़ी जो कार्यक्रम अपना किसान वाणी है इसके प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: और सुरेश भाई आजकल के कुछ कमाण लग रहे
1: भाई देखो परकेश भाई खेत खाली हैं, कई भाई जो है अपना खरीफ की जो है बिजाई चल रही है, इसमें जैसे मुख्य फसल अपने कपास की है, क्यों?
0: हाँ सुरेश भाई देखो कपास की बिजाई चालन लाग रही है, कई भाइया ना तो जो है मान लो कर ली, जिसके पास भाई पानी के कम साधन थे वो करण लाग रहे हैं।
1: देखो ये महीना हम कहेंगे कि भाई कपास बिजाई का सही समय है, बिल्कुल इस महीने में आप जिस भाई ने बिजाई नहीं कर रखी वो बिजाई कर सके है।
0: और लेकिन भाइयों आपने जो किस्म है उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग जो है वो किस्म आप लें।
1: देखो किस्म से पहले भी अपने खेती तैयारी तो कर रखी होगी, जिन भाई ने खेती तैयारी नहीं कर रखी वो अपना देखो तैयारी जरूरी है, क्योंकि बढ़िया फुटाव खातर है पूरी तैयारी अपन सही ढंग से करेंगे तो बढ़िया फसल होगी। इसमें अपना कहीं पहले जुताई जो है मिट्टी जो पटन वाला हल है उस तक करनी चाहिए, और उसके बाद जो है जरूरत के अनुसार 3-4 जुताई जो है उसकी करनी जरूरी हो जाए।
0: और देखो सुरेश भाई जिसके पास पानी का प्रबंध है वो पानी लगा के करें, उसी पड़ेवा कह दे हैं, क्योंकि पड़ेवा इस तरिया हुआ है कि वे जो फसल है नी अपनी वो अच्छी बढ़वार ले ले है, तो इस करके पड़ेवा करके जिन भाइयों के पास पानी है वो अपने पड़ेवा करें और उसके बाद अपने बिजाई करें।
1: देखो यह तो है जो गीला पत्र में दो जुताई कर दें फिर सुहागा लगा दें और खेत में एक्सार भी करना जरूरी हो जाए, और खेत में जो है पौधे सही संख्या खातर बीज की सही मात्रा प्रयोग में लाना बहुत जरूरी है, और बीज का उपचार करके ही उसमें बिजाई करें। जहाँ तक बात आपने कही है बीज की, तो नरमे का बीज जो है बिना रोए का 6-8 किलोग्राम ले लें, अगर उसमें रोए हैं तो थोड़ा बीज बढ़ा दें 8-10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से उसका लेवें। जहाँ तक बात है देसी कपास की, उसमें 5 किलोग्राम बीज काफी रहे।
0: और देखो भाई जो आपने ये बताया कि 5 किलोग्राम वो देसी, लेकिन जो देसी कपास की बिजाई है वो भाई कम लग रही है, कारण कई बार इस तरिया है कि भाव भी अपन अच्छे मिले यदि देसी कपास आप बिजाई करांगे, और कोशिश करनी चाहिए भाई जो अमेरिकन कपास भाई बीजे हैं उसके साथ साथ जो देसी कपास का जो आपने वो लेनी चाहिए उसके अच्छे फायदे हैं, क्योंकि यदि वो बात होगी ना जिस तरह सब्जी की खेती आप लाग रही है, कारण मान लो एक के दम सारे भिंडी बोदी तो भिंडी बोदी वो बोदी तो वो बोदी, लेकिन ये अलग अलग फसल जो है आपने बोनी चाहिए
1: जी। वो देखो इसमें बात करें केश भाई बीटी शंकर की किस्मों की जैसे बात आ जाए उसका अपन 850 ग्राम बीज प्रति एकड़ काफी रहेगा, और ये बीज जो बोने की जो गहराई है वो 4-5 सेंटीमीटर रखें। नरमा की अगर हम बात है किस्मा ही करें तो उसमें देखो किस्म मुख्य रहेंगी H1226 H1098 संशोधित है, शंकर किस्मों में HH223 यानी ट्रिपल एच जो है 223 और एक है ट्रिपल एच 287।
0: और भाई देसी कपास में रहेगी HD123, HD324 और HD432, और शंकर देसी जो किस्म है उसमें है AAH1, ये जो प्रमुख फसल वो बीज है, तो आप इन में से कोई भी ले लें और उसकी बिजाई करें।
1: और बीटी और शंकर जो किस्म है उनकी अगर हम बात करें तो 67.5 सेंटीमीटर से लेकर के 60 जो है इसमें 70 सेंटीमीटर के फासले पे बीज या फिर कतार दर कतार की दूरी जो है 100 सेंटीमीटर और पौधे पौधे दूरी जो है 1.5 फुट की रखनी जरूरी हो जाएगी। और जो हम बात करें वे देखो बाकी किस्म है उसमें कतार दर कतार की दूरी जो है 67 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे दूरी 30 सेंटीमीटर जरूर रखें। बीटी कपास की किस्मों खातर आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर भी आप संपर्क कर सको हो।
0: और जो भाई देखो जिस तरह मान लो इसका में जो मुख्य समस्या है वो खरपतवार नियंत्रण किया हुआ है, तो उसके लिए जितने भी जो किसान भाई हैं बिजाई के तुरंत बाद जो है पेंडा मैथिलीन 2 लीटर ले लें आप, और प्रति एकड़ का हिसाब तय 200-250 जो लीटर है वो पानी में मिला करके छिड़काव आप करें।
1: इसमें एक बात है राकेश भाई मैं वो कहूंगा, इसमें जैसे बिजाई खातर रोने तारे जो बीज हैं वो ना मिले तो रोएदार जो साधारण है बीज को बोने से पहले बारीक मिट्टी गोबरे राखते रगड़ देना चाहिए ताकि ड्रिल में बीज एक साथ निकल जाए। बिजाई कपास बीजने वाली एक खुर वाली ड्रिल से कतारम करें। अमेरिकन कपास की बिजाई करते समय सहार और सिरसा जिलों में जड़ जमीन काफी रेतीली है, उड़े किए करें 37 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सुपरफास्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ बिजाई के समय इसमें डाल दें। यूरिया की जो शेष आधी जो मात्रा है 37 किलोग्राम वो बोक के आने पर डाल लें। अगर जमीन भारी है और कपास गेहूं के बाद आप ले रहे हैं तो भी खाद बिजाई के समय डाल दें। अगर कपास बोने से पहले जमीन खाली थी और जमीन भारी किस्म की है तो सिर्फ फास्फोरस और जिंक की मात्रा बिजाई के समय डाल लें। सुपरफास्फेट जो हमेशा है वो ड्रिल के द्वारा डालने चाहिए।
0: और देखो इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, जो फास्फोरस आप तब डालें जब आपने मिट्टी की जांच करवा रखी हो, यदि उसमें कमी आ रही हो तो वो उसमें खाद डालें।
1: ठीक बात है। और संकर कपास में नत्रजन और फास्फोरस की दोगुनी मात्रा डाल दें। पोटाश की भी जो है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बिजाई के समय इसमें डाल दें। और जहाँ तक बात इसमें जैविक उपचार की, जो मृदा जनित और जो बीज जनित जो रोग हैं उनका बचाव खातिर बीज का उपचार करके बिजाई करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 लीटर फफूंद नाशक जो दवा है, 10 लीटर पानी में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर 1 ग्राम सक्सिनिक तेजाब, इसमें 5 किलोग्राम रोएदार बीज या फिर 7 किलोग्राम रोए उतारे हुए बीज को भिगो दें। रोए वाले बीज को 6 से 8 घंटे तक और रोए उतारे गए बीज को केवल 2 घंटे तक ही इसमें भिगोना जरूरी हो जाए।
0: यानी इन विषयों का आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है यदि आपकी जो कपास की बिजाई कर रहे हैं, तो इन बातों का सुरेश भाई अच्छी तरीके आप ध्यान रखें।
1: और बात देखो एक बात और भाई कहेंगे, जिन खेतों पिछले साल में डिम्मा का प्रयोग देखा गया है वहां क्या करें किसान भाई, बिजाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज में 10 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस 20 cc या फिर 10 मिलीलीटर पानी के घोल से उपचारित करके इसमें बोए। बीज को भिगोने के बाद इसे कीटनाशक के घोल से उपचार करना जरूरी हो जाए। जहां तक बात आज है आपने बताई गई खरपतवार की, तो उसमें बिजाई के तुरंत बाद इसमें जो है पेंडीमेथिलीन दवाई जो है 2 लीटर मात्रा जो है 2 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी में आप मिलाकर 2 लीटर मात्रा जो है दवाई की वो छिड़काव उसमें मिलाकर कर सके हैं किसान भाई।
0: और एक बात और है इसमें, जो ड्रिल मशीन पे डालना है यूरिया और जिंक सल्फेट, यानी ड्रिल मशीन पे आपने डालने चाहिए तो तब आप जो है इसकी अच्छा पैदावार ले सके।
1: इसमें राकेश भाई एक मीली बग जो बीमारी है उसके नियंत्रण खातर भी एक और भाई ने बता दें कि बंजर भूमि और खेतों में जो आसपास जो अपने मेड हैं जो बाढ़ हैं या खाड़े हैं रास्ते हैं उन पर जो उड़ने वाले खरपतवार हैं जिस तरह गाजर है, गाजर घास कांगस घास कहते हैं और कांगी बूटी है या कपास की जो फसल के जो पथली साल के जो ठूंठ हैं उसमें जो पौधे जामजिया हैं उन्हें भी आप नष्ट कर दें। कपास की छंटियों में डेरा नीचे जो टिंडे गिर गए हैं या जो पत्ते गिरे हैं उन्हें भी किसान भाई जला दें ताकि इनसे बीमारियां पनपने का अंदेशा ना रहे।

0: सुरेश भाई देखो बातचीत भाइयों गलत जारी रखांगे और ईब करावांगे भाइयों का मनोरंजन और भाइया ना सुनाओगे रागनी
1: रागनी भाई सुनाओगे गुलाब सिंह खंडेलवाल और साथियों की आवाज में तो सुने रागनी के बुझोगे ये रागनी सुनो
2: अरे के बुझोगे

खाट बिछाई कर दिया दोस्त निराला, काढ़ के जुती बैठ गया मैं खाट कर दिया।

0: और केशव भाई भजन सुनी रागनी गायक कलाकार था गुलाब सिंह खंडेलवाल और साथी सुपना मेर सिंह का था इस रागनी के अंदर कवि कल्पना। देखो अपनी बात चाली खेती बाड़ी की, खेती बाड़ी के साथ साथ देखो किसान भाई जो है शायद तौर पर डायरी फार्मिंग है, मधुमक्खी है, मछली पालन है, इस तरह के काम करे तो खेती में ज़्यादा मुनाफा हो जाए।
1: और देखो जो किसान भाई खेती करने लग रहे थे उनके लिए जो डेयरी फार्मिंग है वो सही रहे, क्योंकि जो हमारा पशुधन है वो देखो यदि बिक्री में लेके आए हैं तो भी अच्छा है। आजकल जो अच्छे महंगे हो रहे हैं पशु, और यदि दूध बेचना चाहे तो उसकी भी भाइयों ने जो किसान भाई हैं उनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी दूध की भी।
0: और केश भाई एक दिखे देखो पशुओं कारण भी थोड़ा लोग बाग मोमता ही कम करने लग रहे हैं, मतलब बहुत से घरों में तो पशु देखने को नहीं मिलता।
1: ये बात आपकी सच्चाई है, लगभग 50% गांव में पशु रखने बंद कर दिए हैं, और जदे कारण यह है कि पशु की जो कीमत है बढ़ने का यह मुख्य कारण है।
0: ठीक बात है, देखो पशु तो महंगा बहुत हो गया और संभाल तो महंगा भी, खिचड़ा तो महंगा है पशु।
1: हाँ, खिचड़ा कम करके राजी हैं, इस करके तो पशुधन जो वो लगातार कम होने लग गया है। लेकिन ये जरूर है कि यदि आप अच्छी खिचड़ा करें, अच्छे बढ़िया सीमन रखवाएं, क्योंकि जो मुर्रा नस्ल है नी, और अच्छी मुर्रा नस्ल यदि घर में तैयार हो जाए पशु पालन करना भाई, और उसमें अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस हो जाए वो दूध भी अच्छा दें और बिक्री में भी अच्छे आवे। आपने सुना होगा कि 6 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख की, 8 लाख की, तो वो अच्छी नस्ल, लेकिन उसकी खिंचवा करनी पड़ेगी किसान भाइयों ने।
0: ठीक बात है, देखो पशुधन महंगा बहुत है, मान लिया अब देखो एक तो ज्यादा तो अपना बढ़ना है, बढ़िया नस्ल वाला पशु के साथ बढ़ाएंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा।
1: और जिस तरह मान लीजिए गर्मी का मौसम है, खिचड़ा तो निड रहे नहीं, 3-4 बारी तो पशु ने पानी पिलाना पड़े, उसके बाद जो है जोड़ पर भी लेके जानी पड़े, हरा चारा भी चाहिए। लेकिन यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे, जिस तरह मान लो आप 2 पशु ले रहे हो और 20-20 किलो दूध वो आपने दे हैं, लेकिन देंगे जदे आप उनका ध्यान रखोगे, आपके पास मुर्रा नस्ल के पशु होंगी, महस होंगी, वो अच्छा दूध देंगी, तो उसमें बिक्री भी आप कर सको, यानी घर का खर्चा भी चलाया जाए इसके।
0: खर्चा देखो बेरोजगारी की हम बात करें, बेरोजगार कई बार ना मिलता तो ये डेयरी व्यवसाय बहुत बढ़िया है, आप 2 की बजाय फिर 4 कर लें 10 कर लें, अगर जगह है कुछ करने की हिम्मत है जज्बा है तो काफी कुछ मुनाफा अपना जो भाई है ले सके और लेने भी लग रहे हैं बहुत से।
1: और हम मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा सुरेश भाई, जो पशुपालक भाई हैं, समय समय पर जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसमें ट्रेनिंग दी जाए दूध के बारे में, भाई आप दूध किस तरह उसका उत्पाद बना सके हैं, के बना सके हैं, किस तरह आप बिक्री करें, मशीना की सारी जानकारी दी जाए, तो इस तरह जानकारी लेनी चाहिए। जब भी ये प्रशिक्षण दिया जाए तो उस टाइम पर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हम करने लगे उससे पहले प्रशिक्षण हो तो हमने उसका बेरा भाई कितना उसका मुनाफा होगा, घाटा होगा, तो किस तरह घाटा होगा, बाजार कड़ा उपलब्ध है, तो इन सब विषय जानकारी आपने उड़ते मिलेगी।
0: देखो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण तो लेना बहुत ही जरूरी हो जाए, क्योंकि वहां से नहीं बेरा पड़ जाए कितनी सब्सिडी, कितना लोन वगैरह गवर्नमेंट दे रही है और क्या क्या सुविधा गवर्नमेंट और भी दे रही है, क्या क्या मुनाफा जैसे मार्केटिंग या बात है वो भी वहां बताई जाएंगी और कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, इस तरह बातें वहां सीखने को मिलेंगी। एक तो आदमी सीधा करे किसी चीज का प्रशिक्षण लेकर आएगा तो वो उससे मुनाफा कमाने की ज्यादा संभावना है। और जहां तक आपने बात बताई वह प्रोडक्ट काफी आजकल उत्पाद बहुत दूर से काफी प्रोडक्ट बना है
1: आजकल, तो देखो बाजार में लस्सी बिकने लग रही है।
0: हाँ
1: और तो आप है दही भी है, लस्सी भी है,
0: मावा
1: क्रीम है, मावा है, पनीर है, सब कुछ
0: पनीर
1: जो है बिक्री मान लग रहे हैं।
0: को आप उस साइड जाएंगे तो उसका तो और भी मुनाफा बढ़ जाए किसान भाई का।
1: लेकिन एक जो समस्या है मोटे तौर पर वो आ रही है, उसमें जो पशु है नी, जिस तरह जिस टाइम गैप बना हुआ है वो रुकन नहीं रह गया, मोटी समस्या जो पशुपालक भाई है उनके लिए ये भी होने लग रही है, क्योंकि जो पशु है वो 3-4 दिन या कई बार तो 5-5 दिन गर्मी में रहे, लेकिन जो भी पशुपालक भाई है उतनी ध्यान रखना पड़ेगा, 4 या 5 दिन यदि वो पशु गर्मी में रहे तो आपने लगातार उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके वो रुकेगा।
0: देखो और किस भाई ये कारण है कुदरत के, मान लो खान पान का, मान लो उसमें खनिज मिश्रण भी देना पड़ेगा, पशु सेवा भी मांगा है, वो थोड़ा हलना टलना मांगा है, एक खूंटे के ऊपर भी बड़ी दिक्कत आ जाए, थोड़ा उस पशु घूमना भी चाहवा है तो घूमना ही फिर भी जरूरी हो जाए। तो देखो बातें आप करते रहेंगे और लेकिन साथ ही साथ भाइयों का मनोरंजन भी जरूरी है, क्यों ना भाई ने राय सुनवा दे हैं विक्रम सिंह फोगाट और साथी सुने लागनी।

अर्जुन गला है धोखा हो गया है भूलो सार गया था दावत खाने गया था और मांगे

और केस भाई ये सुनी भैया नारागनी गाय कलाकार थे विक्रम सिंह फोगाट और साथी, और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का जो है समय हो गया है, और हमारे गांव में थोड़े अंतराल के बाद में फिर मिलेंगे भैया थे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। एफएम बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम मारे गांव।

0: कार्यक्रम हमारे गांव में एक बार फिर आपका स्वागत करा राकेश भाई और
1: सुरेश भाई।
0: देखो सुरेश भाई, आज हम जो है भैया ने जानकारी देवांगे जो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं उनके बारे में और के योजनाएं जो हैं वो चालन जो 15 सूत्री कार्यक्रम चालन लाग रहे हैं वो के उनका बारे में जो है ना आज भैया ने जानकारी देवांगे।
1: यानी जो अल्पसंख्यकों के लिए जो चला रखी है
0: वो हर किसी के लिए है, वो अलग अलग के लिए है, उसके में चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, जो कमजोर वर्ग है उनकी सरकारी योजनाओं का बराबर फायदा दिलाने का है। भाई सरकार ये चाहो कि हर वर्ग को जो है ना बराबर अधिकार मिले,
1: इनकी तरक्की हो जाए, विकास हो जाए, मतलब इनको काफी कुछ सहयोग करने के लिए योजना चलाई हुई है सारी।
0: और ये जो शुरुआत है ये 2006 में करी गई थी और अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है वो इति चलाव है। इसके 4 बड़े उद्देश्य हैं, शिक्षा के अवसर बढ़ाना, दूसरा है आर्थिक गतिविधि और रोजगार में बराबर हिस्सेदारी, जिस तरह सरकारी नौकरी, रोजगार के लिए लोन।
1: इसमें तीसरी बात आएगी बुनियादी जो ढांचा है उसमें इनका हिस्सा उचित हो जाए, जीवन स्तर सुधारने का इनका मकसद है, और सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम एक ये भी इनका उद्देश्य है इन योजनाओं का।
0: और देखो भाई, जब तक शिक्षा की आप बात करा तो उसमें प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, तो इसमें ये छात्रवृत्ति है। और बात करा रोजगार और कौशल की, जिस तरह मैंने NMDFC लोन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,
1: प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसके तहत आ जाए है। और आजीविका जो इसमें आज है वे DNRLM जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये भी इसमें जो है मुख्य योजना का हिस्सा है। बैंक लोन की भी इसमें आज है प्राथमिकता क्षेत्र जो है ऋण PM मुद्रा योजना, वो भी इसके अंदर आ जाए योजनाओं में।
0: और इसकी जो खास बात वो ये है कि जो जितने भी दूसरे मंत्रालय हैं उनकी योजनाओं का 15% बजट जो अल्पसंख्यक है उसके लिए तय किया जाए।
1: इसमें बात करें दूसरा जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उसमें राजनीति मांग जैसे को जिला बनाना है, महिला कॉलेज बनाना है, छात्रवृत्ति आदि उनके लिए भी मांग इसमें मांगी जाए है।
0: और यदि अगर कोई भी भाई PM के 15 सूत्री कार्यक्रम की किसी खास योजना के बारे में जानना चाहो है, जिस तरह छात्रवृत्ति के बारे में, लोन या आवास, तो उसमें जो आपने डिटेल मिल जाएगी।

0: इसमें जो छात्रवृत्ति योजना है इसमें कौन ले सके है वो भी भाई ने बता दी। इसमें कक्षा पहले से लेकर के दसवीं तक के जो छात्र हैं वो इसमें ले सके हैं, और आयु सीमा जो आय सीमा है इनकम जो है वो माता पिता की सालाना 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
1: और जब तक बात सब अंक पिछली कक्षा में 50% जो है न्यूनतम अंक होने चाहिए, और फायदा यह रहेगा कि प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस और रख रखाव भत्ता, और भाइयों 30% जो सीट है वो लड़कियों के लिए आरक्षित है।
0: और जहाँ तक बात है वे दसवीं के बाद छात्रवृत्ति जो योजना है वो कौन ले सके है, 11वीं से लेकर के PhD तक की जो शिक्षक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो विद्यार्थी हैं, ITI पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन इसमें PG भी है वो भी इसकी छात्रवृत्ति के इश्क में ले सके है।
1: और आय सीमा की बात करें भाई, उसमें सालाना जो आय है वो 2,00,000 तक कम होनी चाहिए, और पिछली परीक्षा में जो है वो 50% न्यूनतम अंक होना चाहिए, और इसका जो फायदा है वो प्रवेश, ट्यूशन फीस, रख रखाव भत्ता, कोर्स के हिसाब से 7,000 तक लेकर 13,000 तक जो है सालाना मिल जाएगी, और 30% जो है ये भी लड़कियों के लिए आरक्षित है।
0: एक नंबर 3 में बात आ जाए, मेरिट कम मींस आधारित जो छात्रवृत्ति योजना है वो कौन ले सके है, प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी, इसमें ही आ जाए। इसमें आय सीमा रहेगी 2,50,000 तक कम।
1: और अंक की बात करें 12वीं में जो है 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए, और कॉलेज में जो एडमिशन प्रतियोगिता है परीक्षा से होना चाहिए। फायदा जो है पूरा कोर्स फीस अधिकतम जो है वो 20,000 रुपये साल का होना चाहिए, प्लस जो है रख रखाव भत्ता 10,000 और हॉस्टल का है 5,000, तो ये रहेंगी, और 30% जो सीटें हैं वो इसमें भी लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।
0: और केस भाई इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जैसे एक परिवार 2 बच्चे इसमें उसका फायदा ले सके हैं, आधार कार्ड जरूरी है, और 50% कम हाजिरी या अनुशासन किसी ने तोड़ दिया उसकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, और नवीनीकरण खातर 50 अंक ले आना इसके लिए जरूरी हो जाए।
1: और इसके लिए वह अप्लाई करने का तरीका रहेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर आप ऑनलाइन कर सकें।
0: हाँ, इसमें बाकी जानकारी आप और भी इसमें ले सके हैं, और देखो अपना जो है कार्यक्रम का जो है आकाशवाणी का उद्देश्य है भाई जानकारी देना और मनोरंजन करवाना, तो जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी भाइयों का बहुत जरूरी हो जाए, तो क्यों ना भाइयों के लिए रागनी सुनवा दें। नरेंद्र डांगी और साथी कलाकार रहेंगे, सुने रागनी।

ഇബദം ഉഠണ ഇബദം ഉഠണ

Yeah, you know.

தன்னாரை ஏழ ராணி.

चढ़ जा, जा। चाद शखर म

Thank you.

0: है?
1: टेंजरीन बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था,

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुरेश भाई ये सुनी भाई ना रागनी और देखो भाई गर्मी का मौसम भी शुरू हो रहा है।
2: गर्मी का देखो मौसम एक विभाग है और भी बढ़ता जाएगा क्योंकि देखो जेठ लाग रहा है भाई। जेठ भी दो से आधा जेठ पहला तो आ गया है, अगला पूरा यो आधा यो पड़े यानी दो एक महीने तो आप

0: और दो जेठ होते फिर रोग जाके टिक जाएगा गर्मी का।
1: हाँ देखो, गर्मी बेगर्मी भी जरूरी हो जाए है, लेकिन गर्मी का बचाव बहुत जरूरी हो जाए है। गर्मी काफ़ी कुछ हद तक बचाव आदमी खान पान से रोक सके है, रहन सहन से रोक सके है। मान ले किसी भाई ने बाहर जाना है, थोड़ा वो खा पी के निकले, खाली पेट ना निकले। अगर घना जरूरी तो निकले, नहीं तो वरना भाई दोपहर को तो मतलब घर से निकले ना, घना जरूरी तो निकलना पड़ जाओ तो अलग बात है। फिर
0: यानी कोई खेत का काम धंधा है और जरूरी है।
1: हाँ जरूरी है,
0: लेकिन उसमें पानी पी के निकले और भाई कुछ अंगोछा अंगाछा लेके निकले अपने सिर पर रखें, ताकि जो शमी घाम हो या लू है उससे बचा जा सके,
1: बचा जा सके। और पानी साथ में रखें, पानी का साथ में रखना बहुत जरूरी हो गया है।
0: और जो तरल चीज वो ज्यादा से ज्यादा लें।
1: देखो वो तो है, वो हाइड्रेशन जो बोलते हैं ना, जल का तो पूरा सतर शरीर में पूरा होना चाहिए, निर्जलीकरण शरीर नहीं होना चाहिए, जल की मात्रा शरीर में ज़्यादा रहनी चाहिए, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीवे। और तरल पदार्थ जो आपने बात की वह भी अच्छी बात है, और अपना तले हुए सौदे से बचें।
0: और यूँ जो मौसम है
1: हाँ,
0: इसमें मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा है
1: हाँ,
0: तो जो कटोरा कोई भी चीज है वो ना खाओ। हाँ, कोई भी जिस तरह मान लो शहर में जाए तो कटोरा कई बार फल उसमें ना लें, वो अलग आप लें तो पूरा फल लें और उसको आप आराम से जो है वो खाओ। फिर
1: ठीक बात है,
0: जितने भी जिस तरह पानी तरबूज है उसका आप प्रयोग कर सके हैं, और जो जिन में पानी है उनका आप ज्यादातर ज्यादा प्रयोग कर।
1: इसमें सर केश भाई एक बात और आ जाए है, मान लिया अभी कई बार फ्रिज में कोई चीज़ बासी है ज़्यादा, वो भी ना सेवन करें, वो भी नुकसान कर जाए।
0: यानी ज़्यादा ठंडी जो भी चीज़ है, और देसी सौदा हो नहीं जिस तरह भाई लस्सी है उसका प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें,
1: लस्सी का प्रयोग करें। नींबू शिकंजी का है, हमारे कई इलाके में राबड़ी भी बनाई जा रहा, बहुत बढ़िया रहे आज के मौसम में। दलिया है, जैसे आजकल दलिया का जो खान पान है ना, महीने दो महीने बहुत बढ़िया रहे सेहत के लिए।
0: और जो आपने राबड़ी बताई वो तो बहुत बढ़िया रहा शरीर के लिए, लेकिन कई है नहीं उनती वो बनाने का कोनी बेरा, तो कहीं न कहीं तो जो आप राबड़ी बनाने की विधि जरूर सीखें। और अच्छी गर्मी में जो है राबड़ी का न्यारा मजा है,
1: न्यारा मजा उसमें ऐसा है भाई, देखो एक तो अपना जो लीवर सिस्टम है, जो हजमा जो सिस्टम है वो भी उसमें बढ़िया रहे, और जो गर्मी लगने की संभावना बहुत ही कम हो है। एक उसकी बजाय आप गर्म ज़्यादा खाएं जाओगे, मान लो ज़्यादा चाय पी ली, मान लो ज़्यादा चाय पीते रहें, धूम्रपान करते रहें, तड़े हुआ खाते रहें, उसमें ज़्यादा लगने की संभावना लू की ज़्यादा रहे।
0: और तड़ेओड़े की जो आप बात करना है, तड़ेओड़े तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि ये सर्दी में तो फिर भी चल जाए, लेकिन गर्मी में तो तड़ेओड़ा खाना ही चाहिए।
1: हाँ, और जहाँ तक बात है भाई बीमारियाँ भी देखो, हमें बीमारी देखो वर्केश भाई, आदमी 90% तो खुद ही लापरवाही में लगा हुआ है। ये कई बार देखा है जैसे ज़्यादा चिल्ड भी आजकल के मौसम में, एक बार गर्मी लागे फिर ज़्यादा चिल्ड पीने की कोशिश करें, मैं फ्रिज की बोतल पानी की है, या जैसे बच्चे हैं कुल्फी का लालच कर लें गाँव में देखा, तो वो भी कई बार गर्म ठंडा बन के ऐसे जाए, खरसी जुकाम बुखार हो जाए है, फिर वो बड़ा रूप बीमारी का धारण हो जाए।
0: यानी
1: तो भी सिद्ध है,
0: मटका का पानी पियो,
1: मटका का पानी पियो घड़िएगा, बहुत बढ़िया रहेगा।
0: जिस तरह मान लो शाम ने भर दें और फिर अगले दिन सारे दिन जो उसका प्रयोग करें, शाम ने भर दिया और बैर रख दिया, ठीक
1: बैर,
0: और हाँ बैर रखें, क्योंकि यदि भीतर रखेंगे तो या आप जो पंखा चलाओगे उससे फिर वो मजा वाली बात कुंदी रंदी।
1: और एसी भी देखो काफी प्रचलन मान लग गया आजकल, हर जगह एसी का सुविधा होने लगी है। एसी का भी देखो नॉर्मल टेम्परेचर रखोगे तो आप उसमें लाइट का भी फायदा रहेगा, बिजली बचाने का भी, और अपना सेहत का भी फायदा रहेगा। कई बार तो बहुत ज्यादा डाउन कर ले उसका टेम्परेचर, उसमें देखो शरीर के ऊपर नुकसान तो है ही।
0: और देखो भाई कई बार जो है वो पानी जो पीना है उसकी समस्या हो रही है, तो उसमें जो ये है कि आप पानी की जो है, क्योंकि देखने लग रहे हैं कि नलका का जो पानी है वो ज्यादातर प्रयोग होने लग रहा है, नहर के पानी की बजाय नलका का पानी ज्यादा प्रयोग होने लग रहा है, तो आप उसकी जाँच जरूर करा ले, क्योंकि कई बार ये है कि आप ये सोचें जहाँ भाई बड़ा शुद्ध पानी है, लेकिन वो पानी सही होता को नहीं, आपने जांचते ये पता चल जाएगा कि नलका का जो हमारा पानी है वो किस तरिया का है, उसमें के कुछ है, तो वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि नलके सारे खराब हुए, लेकिन आपने जानते पता चल जाएगा यदि आपका पानी ठीक है तो आप प्रयोग करें, और यदि आपने ये लगा भाई ये नलका का पानी सही है तो वो प्रयोग ना करें।
1: पानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, साफ पानी पीवें, बहुत फायदा उस चीज़ का। और आर ओ भी बहुत से घरों में

0: तकरीबन लगवा रखे हैं, उसका TDS भी चेक करवाते रहें। कई बार कम ज़्यादा TDS होगा तो उसमें भी जो लाभदायक जो हमारा जो उसमें तत्व तो हो निकले जाए, कई बार उससे भी बड़ा शरीर में बड़ी दिक्कत आनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए TDS भी उसका चेक करवाते रहें। और पानी का जो आपने बताई वो भी नलके का जो है पी रहे हैं उसकी भी जाँच करवानी जरूरी हो जाए है। और भाई देखो छोटे बच्चे हैं उनका भी अपन ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार बच्चे जो है नंगे पाए मन गर्म रहता है जो, या सिर फूल लिकड़ जी बाहर, तो उनको भी ढक के, और इसी तरह अपना जैसे पशुधन है उसका भी ध्यान हमने गर्मी में रखना पड़ेगा। छोटे जो पौधे आप लगा रखे हैं गर्मी से उनका बचाव करना पड़ेगा।
1: हाँ, ये जो आपने बताया जिन भैया ने, कई बार यह है कि जिस तरह मान लो फलदार पौधे लगा दिए
0: हाँ
1: तो उस पर इतनी यदि गर्मी पड़ेगी तो वो फिर झुलसन की काफी संभावना रहे, तो ऐसी अवस्था में जिस तरह पराली है वो आप लगा सके हैं या छाया का कोई भी आप कर सके हो।
0: पानी उसमें देते रहे, दोपहर में पानी देने से उसमें बचाव करें, सुबह शाम तो पानी दे दें, पौधे मच्छर रहे है दोपहर को नहा दें उसमें।
1: सुरेश भाई शाम ने पानी दें,
0: हाँ शाम में दें बिल्कुल।
1: क्योंकि शाम ने यदि पानी देंगे, अब सुबह पानी देंगे तो देखो फिर घंटे पाछे धूप ज्यादा हो जाए, वो पानी यदि खड़ा रह गया तो वो गर्म हो जाएगा,
0: इस
1: उसकी तासीर बदल जाएगी।
0: हाँ और एक बात और भाई कहेंगे, देखो आजकल देखो अपन भाई पशुओं की बात भी कर ली लेकिन पक्षियों का भी ध्यान रखना पड़ा, जीव जंतु जो उनका नहीं ध्यान रखना पड़ेगा। भाई सकोरे अपने टांग दें जगह जगह, अपना उन बर्तनों को पानी डाल दें उसमें चूगा पानी, पशु पक्षियों का ध्यान रखना पड़ेगा।
1: और देखो भाई पहले तो ऐसा होया करता है सुरेश भाई, कच्चे खाल होया करते तो उसमें कटा होया करती, कटा में पानी पी लेंदे,
0: पी लेंगे।
1: लेकिन आजकल वो कोनी। दूसरा बात मैं आपने ये कहूँ, जो आपने बताया था कसोरे, ये जो हमारे बुजुर्ग थे वो तो उनका प्रयोग कराया करते, लेकिन अब जो है वो इस बात का ध्यान कौन रख दे। तो हम तो विशेषकर भैया तक कहना चाहूंगे कि जो पक्षी हैं उनका भी जो है ना पानी का प्रबंध आप जरूर करें।
0: बिल्कुल जरूरी है क्योंकि हर जीव जंतु में प्यास लग गए है और इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा पानी की बड़ी मांग हो जाए, हर पानी ना बचाओ, पानी को फिजूल खर्ची से भी बचें, पानी बहुत ही अनमोल है और जहाँ जितना जरूरत हो इतना पानी भरते हैं।
1: तो भाई ये कुछ बातें हैं जिनका आपन हर इंसान ने जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और ये नहीं है कई बार ही आम पौधे लगा दिया, हाँ जो आपने बात कही भाई पौधे लगा दिया उसका ध्यान रख दे को नहीं, तो
0: हिलाना पड़ेगा
1: यू
0: अपन को।
1: हाँ तो यू इस मौसम में तो विशेषकर उनका ध्यान रखने का बहुत जरूरी है।
0: ठीक बात है। और देखो ध्यान अपन भाइयों में रखना पड़ेगा, सेहत के लिए मनोरंजन बहुत जरूरी है, तो रागनी भाइयों सुनवा दे
1: तो
0: राग
1: भैया
0: में
1: सुनाओगे पासी नैयर और रणबीर बड़वासनिया की आवाज में यार रागनी।
0: सुने भाई।

ਬਾਹਦ ਕੌਣ

0: और केस भाई भैया ने सुनी रागनी गायक कलाकार थे रणबीर भड़वाशनी और पासी नैयर, किस्सा था पूर्णिमल भगत का। और इसी के साथ थे भेजे हुए हमारे गांव समाप्त कर दिए अपने भाई सुरेश चंदू ने
1: और अर्केश भाई ने थे इजाजत सारे बहन भैया ने।
0: राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाहरे गांव, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी हिसार है, आइए सुनते हैं परिक्रमा। प्रस्तुति रहेगी विवेक कुमार की।

आकाशवाणी एट 90 आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: परिक्रमा। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम परिक्रमा लेकर हाजिर है आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक कुमार। दोस्तों, आज की परिक्रमा में आप सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का संदेश। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में माननीय ने क्या कहा, सुनिए आज के अंक में। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर देश के केंद्रों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी हिसार में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आकाशवाणी के स्वर्णिम सफर का भी जिक्र होगा आज की परिक्रमा में एक खास मेहमान के साथ। धान फसल में बौना रोग की जानकारी देंगे डॉक्टर राजबीर गर्ग। इसके अलावा अन्य गतिविधियों की भी आपको देंगे जानकारी। तो आइए आपको लिए चलते हैं परिक्रमा के सफर पर। दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सिरसा से तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए निःशुल्क रेल यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा,
1: इस पवित्र कार्यक्रम दे विच ए जड़ी विशेष ट्रेन आज सिरसा ते रवाना हो रही है। इस समारोह दे विच बैठी प्यारी गुरु साध संगत जीओ, एक जोरदार असी फतेह बुलाइए। चलण ते पहला वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग प्यारी साध संगत जीओ, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे सिरसा दी इस ऐतिहासिक तरह से सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए पवित्र श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन अज इत्थे ते रवाना करन दा मुझे मौका मिल रहा है। सत्संग जीओ, ये यात्रा श्रद्धा आस्था और गुरु साहिबान के प्रति ये समर्पण का प्रतीक है। साथियों, मैं इस अवसर ते सभी गुरु साहिबान के पावन चरणों में आज मैं कोटि कोटि शीश नवा करके नमन करता हूं और अरदास करता हूं

कि उन्हां दी असीम कृपा हम सब पर वो बनी रहे। मैं यहां उपस्थित साध संगत जी को इस मंगलमयी यात्रा के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनावां देंदा हां, और मैं गुरु चरणा दे विच एक कामना करता हां कि आपकी यात्रा ये सुखद, सुरक्षित और फलदायी ये हो। साध संगत जीओ, असी जानते हां कि सिरसा का नाम सिख इतिहास में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान दे नाल लिता जांदा है। असी जानते हां कि सिरसा दे विच दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से ये जुड़ा हुआ है। हम सब ये भी जानते हां कि 1706 में जब गुरु साहिब तलवंडी साबो से दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब वे सिरसा में इस पवित्र भूमि पे उन्होंने कुछ समय यहां रुके थे। साध संगत जीओ, यहां स्थित पवित्र गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब आज भी उस पवित्र प्रवास की वो साथियों याद दिलांदा है। यही नहीं, ये पवित्र तरह गुरु साहिबान के पावन चरणा ते अनेक बार ये पवित्र हुई है। दूसरी ओर साध संगत जीओ, सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ वह महान पवित्र भूमि है जहां दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत उथे समाए ने। गुरु साहिब ने हमें सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और सच्चा धर्म और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी ये पूजा है। परम सत्कार योग, वही उन्होंने संसार को गुरु गोविंद सिंह जी ने ये अमर संदेश दिता सी। उन्होंने उस पवित्र भूमि ते अपनी वाणी दे विच ये संदेश दिता। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस भूमि ते बोलिया सी, उन्हां दी वाणी से गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां दी देन, जो प्रभु को मिलोगे चाहो खोज शब्द में ले ही। ये गुरु गोविंद सिंह जी दी वो पवित्र वाणी वो उस भूमि ते आज भी हमें साथियों साडा मार्गदर्शन कर रही है। सात प्यारी सात संगत जीओ, ये वाणी ये संपूर्ण मानवता का आज भी मार्गदर्शन कर रही है। आज सिरसा ते नांदेड़ तक चलने वाली ये विशेष ट्रेन भारत की उस आध्यात्मिक धरा का प्रतीक बन रही है जो उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को गुरु साहिबान की शिक्षाओं से ये जोड़न का काम कर रही है। साध संगत जीओ, तीर्थ यात्राएं समाज को जोड़ने का एक माध्यम है। ये यात्राएं हमारी नई पीढ़ी नू उना दी जड़ां दे नाल जोड़न दा, साथियों अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से जोड़न दा ये काम कर रही है। जब कोई साध संगत जी श्रद्धालु तीर्थ स्थानों ते वहां शीश नवांदा है तो केवल वो दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई चेतना लेकर के वो लौटता है। प्यारी साध संगत जीओ, तीर्थों के इसी महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उनके कुशल नेतृत्व में धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्यारी साध संगत

अभूतपूर्व कार्य कर रहे किए जा रहे हैं। सिख इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए भी केंद्र सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण प्यारी साध संगत जीओ कदम उठाए ने, चाहे स्वदेश दर्शन योजना के तहत आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, अमृतसर साहिब और खटखड़ कलां, कलानौर ते पटियाला सहित विरासत सर्किट के विकास को मंजूरी देने का एक काम किया है। प्यारी साध संगत जीओ, असी जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा दे विच साड़ी सरकार ने बड़े पद्धर दे विच गुरु तेग बहादुर जी का एक महीने उन्हां दे शहीदी दिहाड़े नूं मनाण दा काम साड़ी सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, ये साडे लिए बड़े फखर दी गल भी है कि जेड़ा इतिहास ये साडे पास है उस इतिहास नूं आने वाली पीढ़ियां नूं बताने की जिम्मेवारी ये साडी है।

0: दोस्तों 17 मई को आकाशवाणी हिसार की ओर से मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे विधायक रणवीर सिंह गंगवा। यह दौड़ प्रातः आकाशवाणी हिसार केंद्र से प्रारंभ होगी, जिसे लेकर पूरे हिसार में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों आइए आपको मिलवाते हैं आकाशवाणी से जुड़े रहे उस व्यक्तित्व से जिनकी उम्र 80 वर्ष है और उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष प्रसार भारती की सेवा में लगाए हैं। आप हैं दूरदर्शन हिसार के पूर्व न्यूज डायरेक्टर श्री अजीत सिंह।
1: आकाशवाणी से जुड़ाव तो बचपन में हो गया था, नौकरी तो बाद में हुई, लेकिन हमारे गांव में पहले एक कम्युनिटी सेट होते थे रेडियो के, जो लाउड स्पीकर के साथ चलते थे
0: जी।
1: तो 1956 में हमारे गांव में आया तो हम सुनते थे, दिल्ली से प्रोग्राम आते थे, उसके अंदर जैसा देहाती प्रोग्राम में यहाँ होता है वहां भी एक पंडित जी बनते थे, वो हमारे गांव के नजदीक एक कौंड गांव वहां के थे, हृदय राम, हम उनसे सुनते थे, सारे हैरान भी होते थे कैसे आवाज आती है बगैर तार के यहाँ। लेकिन एक घटना हुई, मैं 7वीं क्लास में था तो हमारे टीचर हमको उस कौंड गांव में ले गए, वहां एक जनसभा थी, मिनिस्टर थे शाहनवाज खान, वो आजाद हिंद फौज में भी रहे नेताजी सुभाष के साथ, और वो रेल राज्य मंत्री थे
0: जी।
1: जलसा हुआ, हृदय राम जी ने मांग पत्र रखा और कहा जी कौंड में रेलवे स्टेशन होना चाहिए, मंत्री जी ने हाँ कर दी, हम सभी लोग बड़े खुश हुए। लेकिन मैं 7वीं क्लास का विद्यार्थी, मैंने तो कुछ पता नहीं था रेडियो की क्या रचना है, कौन है, क्या होता है। मैंने सोचा कि एक अनाउंसर बहुत बड़ा अधिकारी होता होगा जिसने एक रेलवे स्टेशन मंजूर करा लिया, तो मेरे कहीं बाल मन में कहीं छोटा सा एक मतलब एक इच्छा सी जगी कि क्या मैं भी बन सकता हूँ। ये तो बचपन की बात थी। जब मैं कॉलेज में गया तो वहां पर मेरा जो रुझान था वो न्यूज और करंट अफेयर्स में हो गया, तो वहां पर सुनते उससे जनरल नॉलेज बढ़ गई। तो जब बीएससी कर ली तो फिर हम यूपीएससी के एग्जाम देने लगे, और सौभाग्य था कि मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस भारतीय सूचना सेवा में सेलेक्ट हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग आकाशवाणी में शिमला में हो गई
0: जी। बहुत
1: शिमला में हुआ तो वहां पर जो आपको पता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसके बाद वहीं पे शिमला समझौता, शिमला समिट हुई थी, तो मेरे को इन बड़े बड़े अवसरों पर शिमला जब युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान का, तो हमारे न्यूज एडिटर बीमार हो गए रामकुमार काले जी, और उन्होंने मुझे ही कहा हमारे न्यूज एडिटर जो थे कि आप पढ़ो, और मैं 3-4 महीने खबरें पढ़ता रहा, इससे एक और तरह का हौसला मिला।
0: बिल्कुल।
1: फिर जब शिमला समिट हुई तो वहां पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त के राष्ट्रपति थे वो आए थे, साथ में बेनजीर भुट्टो आई थी, तो मुझे ये लगा कि मैं एक रेडियो रिपोर्टर होने के नाते ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी बनता जा रहा हूँ
0: जी।
1: एक, एक, एक, एक नया कॉन्फिडेंस इससे बनता है। उसके बाद मेरी ज्यादातर जो पोस्टिंग रही वो जम्मू कश्मीर में रही, करीबन 20 साल, 13 साल जम्मू में, 7 साल कश्मीर में, वहां पर शांति और अमन का दौर भी देखा और आतंकवाद भी देखा। तो आतंकवाद में बड़े वहां पर हुए, हजरत बल श्राइन के ऊपर आतंकवादियों का कब्जा हो गया था और वहां पे चरारे शरीफ का हुआ था, पर मैं एक प्रोग्राम का जिक्र करना चाहता हूँ, उसका नाम था हमने शुरू किया चरारे शरीफ, बशीर मलिक थे मेरे साथी, उन्होंने किया था ये, लेकिन मेरा भी सहयोग रहता था उसमें। क्या था ये, उस प्रोग्राम का नाम था जरस
0: जी।
1: तो उसके अंदर जो था ना वो उसको उसका मतलब सदाए जरस उस प्रोग्राम का नाम था, इसका मतलब होता है जो कारवां चलते हैं और उसमें किसी घोड़े के या उसके गले में घंटी बजी रहती है उसकी छोटी सी आवाज
0: जी।
1: आम आदमी चिट्ठियां लिखते थे हमें बड़ी लंबी लंबी आतंकवादियों की घिनौनी हरकतों को दर्शाते हुए
0: जी।
1: अपनी आवाज भी रिकॉर्ड करते थे। इसका महत्व इस बात में है कि जिस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर आतंकवाद का साया था, कोई आतंकियों के खिलाफ लिख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, रेडियो बोल रहा था, आम आदमी को आवाज रेडियो ने दी, तो आतंकवाद की स्थिति में रेडियो का एक तरह से महत्व उभर कर आया। तो ये जो था, उसके बाद वहां पे 99 में जो कारगिल का युद्ध हुआ वहां भी मैं था, उसकी कवरेज हमने की, उसके बाद वहां 2002 के अंदर जो चुनाव हुए वो भी था, फिर ये रेडियम था, फिर मैं दिल्ली ट्रांसफर हो गया था मेरा 1998 में, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ विदेश यात्रा पे गया था। वो यात्रा अमेरिका की थी, स्विट्जरलैंड की थी, जर्मनी की थी खासतौर पर। और ये जो थी यात्रा, आपको मालूम होगा 11 सितंबर 2001 अमेरिका में आतंकी हमले हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे,
0: बिल्कुल।
1: तो उसके पहली वर्षगांठ के ऊपर उन देशों के प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट को बुलाया था प्रेसिडेंट बुश ने, जहां पर आतंकवाद था, इसलिए वाजपेयी जी वहां पर थे, वो भी मैंने कवर किया। तो मैं ये कहता हूं कि रेडियो ने मेरी पर्सनैलिटी को निखारा है
0: जी जी,
1: उच्चारण धारा प्रवाह बोलना सिखाया है, आवाज का उतार चढ़ाव सिखाया है। टेलीविजन और समाचार पत्र हमारी टोटल अटेंशन मांगते हैं,
0: बिल्कुल।
1: रेडियो आप काम करते हुए सुन सकते हैं, रेडियो ने लोक संगीत और कला को बढ़ावा दिया है, किसान उन्नत बीजों को रेडियो बीज के नाम से पुकारते हैं, मनोरंजन का उत्तम साधन है, अकेलेपन का साथी है। और एक बात मैं और बताऊं
0: जी,
1: वो पंडित हृदय राम ने तो अपने गांव के लिए रेडियो, वो रेलवे स्टेशन ले लिया, मैं तो नहीं ले सका, लेकिन हमारी कुछ कोशिशों से मेरे गांव हरसिंहपुरा में, ये भी करनाल जिले में है, एक केंद्रीय विद्यालय अवश्य खुल गया
0: जी जी।
1: मैं और मेरा पुत्र संजय सिंह, हम करनाल के जो सांसद थे और उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे आईडी स्वामी, उनसे मिले
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि करनाल जिले के लिए सरकार ने एक केंद्रीय विद्यालय मंजूर किया है, पर कोई पंचायत उसे जमीन देने को तैयार नहीं है
0: जी।
1: अब केंद्रीय विद्यालय की मांग का प्रस्ताव हमने अपनी ग्राम पंचायत से पास करा के मंत्री जी को सौंप लिया
0: जी,
1: तो जी हमारे गांव में केंद्रीय विद्यालय खुल गया। आज यहाँ 1000 से ऊपर विद्यार्थी बेहतर शिक्षा पा रहे हैं। अब ये भी आकाशवाणी का धन्यवाद है, ये भी खूब रही। अब 10 वर्ष की आयु में शुरू हुआ आकाशवाणी का प्रेम, अब मेरी 80 साल की उम्र में भी जारी है। मैं रेडियो खूब सुनता हूँ, मोबाइल फोन में सुनता हूँ, 8 घंटे से समाचार निश्चित रूप से सुनता हूँ, दिन भर विविध भारती से जुड़ाव रहता है। अब देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी आदमी, कोई कहते हैं कि रेडियो का तो अब जमाना नहीं रहा, टेलीविजन आ गए और OTT आ गए, ये हो गए जी, नहीं, मैं कहता हूँ जब तक इंसान के पास आवाज है रेडियो रहेगा। रेडियो ठंडी हवा का झोंका है, तरोताजा कर देता है, रेडियो आवाज का जादू है, मोबाइल फोन में साथ रहता है। अब तो मतलब रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब अंदाजा करिए, देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, मोबाइल फोन 100 करोड़ से ऊपर हैं, और जितने मोबाइल फोन हैं ये सारे रेडियो भी तो हैं,
0: बिल्कुल
1: जा सकता है। तो जब तक ये तो जिंदा रहेगा, सबको रेडियो का कोई ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए और इसको सुनते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये है मेरी आकाशवाणी के साथ जो है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों आइए आपको अब लिए चलते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जहां डायरेक्टर रिसर्च श्री राजबीर गर्ग दे रहे हैं जानकारी धान की फसल में संभावित बौना रोग के बारे में। उन्होंने इस विषय पर बोलते हुए कहा,
1: ये जो है रोग, बौनापन बोलते हैं इसको, इसमें पौधे छोटे रह जाते हैं और पौधों का फुटाव बढ़ जाता है, रंग गहरा हो जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है, और या तो ये पौधे मर जाते हैं या इन पौधों में बालियां नहीं आती। पिछले वर्ष 2025 में देखा गया कि कुछ पैचेज में था, कुछ स्पोरेडिक अटैक था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े क्षेत्र में अटैक था, वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला। परंतु विभाग, कृषि विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने मिलकर पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत बड़ी क्रॉप डैमेज हम बचा पाए। इस वर्ष जो है हमारा शुरू से ही प्रयास है कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए जाएं कि ताकि इस रोग का प्रकोप ना हो। वर्ष 2022 में ये रोग आया था, 23 और 24 में नहीं आया, 2025 में आया। हम आशा करते हैं कि 2026 में या तो ये रोग ना आए, आए भी तो इसका समय रहते निदान हो जाए और किसान को किसी प्रकार नुकसान ना हो। इसके लिए हमने क्रॉप एडवाइजरी जारी की है। लगातार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और रीजनल रिसर्च स्टेशन जितने भी मीटिंग करते हैं किसानों में, किसानों को अवगत कराया जाता है। अगर कुछ मोटी मोटी सावधानियां बरतने को मैं कहूं, तो एक तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये निवेदन है कि पिछले आंकड़े ये बताते हैं कि अगेती रोपाई में ज़्यादा प्रकोप होता है। जो भी रोपाई 25 जून से पहले हुई उसमें इसका प्रकोप देखने को मिला। तो अगर आप है ना 25 जून से पहले रोपाई ना करें, और इसी के लिए नर्सरी की बिजाई 15 जून से पहले ना करें। दूसरा ये था कि दो तरह से हमारे यहाँ धान उगाया जाता है, एक धान की सीधी बिजाई हो जाती है, एक रोपित धान है। धान की सीधी बिजाई में इसका प्रकोप नहीं देखने को मिला। तो जहाँ भी हॉट स्पॉट्स बने थे पिछले साल और जहाँ ये इस रोग की संभावना है, वहाँ किसानों से निवेदन है कि धान की सीधी बिजाई करें ताकि इस रोग की संभावना को ही समाप्त किया जा सके। तीसरा ये था कि जो है हाइब्रिड धान में ज़्यादा था, फिर जो है नॉन बासमती में ज़्यादा था, बासमती में बहुत कम था। किसान भाइयों से निवेदन है कि वो बासमती धान ज़्यादा लगाएं और पीआर ग्रुप या हाइब्रिड्स का एरिया कम रखें, अपने खेतों की निगरानी रखें, नर्सरी की निगरानी रखें। जहाँ भी कभी आपको प्रकोप दिखे तो तुरंत कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि अधिकारियों से संपर्क करें, तो इसका जो है समय रहते निदान संभव है। अब किसान भाई नर्सरी बिजाई कर रहे हैं, नर्सरी में ये है कि नर्सरी में इसका जो है वेक्टर है जिसे रोग वाग बोलते हैं, उसको सफ़ेद पीठ वाला तेला, उसको पनपने से रोकना है, उसकी संख्या जो है नहीं बढ़ने देनी है। तो वहाँ धान की पनीरी में भी हम दो दवाइयों के स्प्रे की सिफारिश करते हैं, डाइनेटोफ्यूरोन और पाइमेट्रोजिन, और अगर मेन फसल में भी ये रोग आ जाता तो इन्हीं का जो है ना छिड़काव किया जाएगा। पूरी संभावना है कि इस रोग का जो है समाधान होगा, इस वर्ष को किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: तो दोस्तों ये थी आज की परिक्रमा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय तमाम गतिविधियों को पिरोकर हाजिर होंगे कार्यक्रम परिक्रमा में। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त विवेक कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।
2: परिक्रमा। नब्बे सालों की यादें अब फिटनेस और फन के साथ। आकाशवाणी हिसार लेकर आ रहा है मैराथन 17 मई सुबह 6:15 बजे। यहाँ होगा म्यूजिक, जुम्बा, एरोबिक्स और फुल एनर्जेटिक वाइब्स। तैयार हो जाइए रन करने, एंजॉय करने और 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी सेलिब्रेट करने के लिए। आकाशवाणी हिसार, हर जनरेशन के साथ।

AIR at 90. FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे परिक्रमा, प्रस्तुति थी विवेक कुमार की। ये आकाशवाणी हिसार है, लीजिए प्रस्तुत है खुला आकाश कार्यक्रम। और आज आप सुनेंगे खुला आकाश के अंतर्गत कार्यक्रम एक फिल्म से। तो आज की फिल्म रहेगी श्रोताओं वक्त। रवि साहब ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया, साहिर लुधियानवी जी ने गीत लिखा और जो कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनेंगे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में।

श्रोताओं, आपने सुना रवि साहब के संगीत को, और ये गीत लिखा गया साहिर लुधियानवी की कलम से। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें थी। शशि कपूर और शर्मिला टैगोर पर इस गीत को फिल्माया गया था। आइए इसी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं, आवाज रहेगी मोहम्मद रफी साहब की।

जीवन की सच्चाई को बयां करता गीत साहिर लुधियानवी ने अपने अनुभव से लिखा। रवि साहब का संगीत रहेगा अचला सचदेव और बलराज साहनी पर इस गीत को फिल्माया गया। आप सुन रहे हैं 1965 में आई फिल्म वक्त का ये गीत।

0: 90 सालों की यादें अब फिटनेस और फन के साथ। आकाशवाणी हिसार लेकर आ रहा है मैराथन 17 मई सुबह 6:15 बजे, जहां होगा म्यूजिक, जुम्बा, एरोबिक्स और फुल एनर्जेटिक वाइब्स। तैयार हो जाइए रन करने, एंजॉय करने और 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी सेलिब्रेट करने के लिए। आकाशवाणी हिसार, हर जनरेशन के साथ।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पर काम कर रहे हैं, 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लीडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।

सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक M. नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली

व्यक्तियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम।

0: लाइव बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्म

फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज घायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव तेज चिकन खुराना। इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती मैं।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: तक सी आंधियां।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी हिसार है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। प्रस्तुति रहेगी ऋतु कौशिक की। तो आइए सुनते हैं आपकी फोन कॉल्स पर रिकॉर्डेड कार्यक्रम हेलो हिसार।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: दोस्तों, बाहर का मौसम खूबसूरत हो, हाथ में चाय की प्याली हो और फिर हो हेलो हिसार का कार्यक्रम, जिसमें चलते हों आपके मनपसंद तराने आपकी और हमारी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो क्या ही बात है, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेलो हिसार आपके साथ।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार, हेलो हिसार में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी परेड में हूँ मैडम और यहाँ पर नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ, जंगली नर्सरी के बीच में। अच्छा। मौसम में आज तो सुहाना है मैडम, बादल किया है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। उमस गर्मी तो था लेकिन क्या कीजिएगा, तो मौसम में परिवर्तन होते रहता है।
0: जी जी।
1: तो आज मैं दिशा मूर्ति के मनोरंजन के साथ में अपनी पसंद गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात, अमिताभ बच्चन और राखी जी का फिल्म का गाना है बरसात की एक रात।
0: ठीक है।
1: और गाने के बोल है मन चली ओ मन चली कौन सी ये गली, गाय किशोर कुमार आशा भोसले।
0: जी जरूर, आपने सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया। और
1: सबसे पहले गीत आपको क्यों नहीं जैसे साहब को, पूरे भारत और श्रोता को, आकाशवाणी हिसार में जुड़े सभी लोगों को, अपनी परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को
0: फिल्म बरसात की एक रात से गीत आपको भेज रहे हैं। आप सुनिए और फोन किया इसके लिए बहुत धन्यवाद।

0: हाँ जी बहन जी नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
0: हाँ जी, मैं नथुराम शर्मा कालावाली मंडी जिला सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है नथुराम जी आपका, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक है जी, आप कैसे हैं? रितु मैम बोल रही हैं क्या?
1: जी जी, मैं रितु कौशिक बोल रही हूँ।
0: बहुत नमस्कार जी बहन जी।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेलो हिसार कार्यक्रम में।
0: और ठीक हो?
1: हाँ जी हम बढ़िया हैं, और बताइए आप कैसे हैं, क्या करते हैं?
0: मैं तो जी चाय की ये दुकान है जी मेरी मंडी के अंदर।
1: जी जी बताया था आपने।
0: हाँ जी हाँ जी, आपकी जो वो सुनने को मिलता है जी आप बहुत बढ़िया है, जो शेर शायरी वाला जी।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। बता दीजिए आज नथुराम जी कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं आप?
0: गीत जी इज्जत फिल्म है जी, मोहम्मद रफी साहब का गाना है जी, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे।
1: जी जी जी, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: जी राम अवतार,
1: राम अवतार वर्मा जी, ऑटो मार्केट
0: हाँ
1: हिसार
0: वर्मा जी, वर्मा जी ऋतु कौशिक बोल रहे हो ना?
1: जी। मैं ऋतु कौशिक बोल रही हूँ, कैसे हैं आप?
0: अभी मैं आपका वो प्रोग्राम सुन रहा था, तो आपने हेलो वो
1: नमस्ते हिसार
0: हिसार वाला।
1: जी, नमस्ते हिसार सुन रहे थे। अच्छा,
0: हाँ जी नमस्ते सर, अभी सुन रहा था, फारिग हो गई है, आपसे बात कर रहा हूँ।
1: चलिए और बता दीजिए, काम काज कैसे चल रहा है आपका?
0: हाँ बस कृपा आपकी, और
1: चलिए
0: अपनी बात
1: बढ़िया
0: भी कई दिनों बाद हो रही है आपके साथ तो। हाँ
1: जी। बस ऐसे ही है, कभी आप फोन पे नहीं मिलते, कभी हम ड्यूटी
0: जी
1: पे
0: जी
1: हैं
0: हरिया जी से तो मेरे 2 हफ्ते पहले हुई थी बात।
1: जी बताइए राम अवतार जी, कौन सा गीत है जो आज सुनवा दे हेलो हिसार में?
0: आज जी आपने आपने शोर फिल्म के सारे गाने चला दिए हो गए, उसमें एक गाना ऐसा है वो
1: जी
0: नहीं बजता किसी भी स्टेशन पे,
1: आप बता दीजिए, आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं हम आपको।
0: वो है जी बनके तू लनिया आज चली हूँ मैं साजन के द्वारे।
1: चलिए आज आपकी पसंद पर ये गुम हुआ गाना सुनवाते हैं
0: हाँ
1: हम सभी
0: अभी
1: श्रोताओं
0: ताकि
1: को।
0: ये सभी जनता में ये चलता रहे ना, ये गुम हुए गाने भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, भूले बिसरे गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हिसार
1: जी, हेलो हिसार से बात कर रहे हैं हम। स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं?
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: जयवीर प्रजापत बोल रहे जी, गांव सांगा
1: कैसे हैं जयवीर जी, क्या करते हैं वहाँ?
0: जी। बस कुछ नहीं करते, अब तो जी गर्मी हो रही है।
1: अच्छा जी, मौसम तो
0: हाँ
1: बदलेगा ही अब, और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है
0: हाँ हल्की फुल्की ही हो जाए जी।
1: जी। और बताइए जयवीर जी, किस तरह के गाने सुनते हैं हेलो हिसार में?
0: आप पुराने गाने सुना करा जी।
1: बता दीजिए आज कौन सा सुनेंगे।
0: अच्छा पहले आप बताओ जी, कौन बोल रहे हो जी?
1: मेरा नाम ऋतु।

0: कौशिक है। हाँ
1: हाँ ऋतिक रोशन की आवाज से तो लग रहा था। फिल्म का नाम तो चित्त उतर गया, गाना के बोल है जी, राज छूटे ना तुमसे सनम,
0: जी
1: राज छूटे ना तुमसे सनम है
0: ठीक है, आपके
1: ना।
0: पसंद पर हम भेज रहे हैं ये
1: हाँ
0: वाला
1: जी,
0: गीत।
1: दो तीन नाम बताऊंगा जी। पूर्वी
0: जरूर
1: शिवराज, मनोज दुर्गेश, प्रमोद शुभम, सुमित्रा
0: अच्छा
1: और नीलम और संतरा, मास्टर राम भगत जी और अनिता जी।
0: चलिए आप सबके साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का गीत, सुनना
1: हाँ
0: चाहते हैं जो
1: हाँ
0: आप, और बहुत
1: हाँ
0: बहुत धन्यवाद फोन किया आप।

0: जी नमस्कार जी, देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी, गांव निगाना कला डिस्ट्रिक्ट भिवानी से।
1: देवेंद्र कुमार जी कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आजकल?
0: मैं ठीक ठाक हूँ जी, दुकान में बैठे हैं जी, काम करे जी, गाड़ियों का मिस्त्री हूँ जी मैं।
1: अच्छा, गाड़ियों के मिस्त्री हैं?
0: हाँ जी।
1: चलिए, तो काम करते करते सुनते रहते हैं रेडियो?
0: जी बिल्कुल, काम भी करते रहता हूँ, रेडियो अपना पास में रखा है, बाजार बढ़ता है जी।
1: और बताइए, कौन से प्रोग्राम हैं जो सुन रहे हैं आप और अच्छे लग रहे हैं आपको?
0: जी मैं रोहतक करता हूँ, यहाँ पर काफी आसपास के हैं जी वर्कर काम करने वाले।
1: कौन सा गीत सुनेंगे बता दीजिए
0: जी मुझे? आज जितेंद्र प्राण और नीतू सिंह तो फिल्म आ गया, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले की आवाज में वक्त की दीवार फिल्म का गीत सुना दो जी।
1: कौन सा गाना?
0: जादू सा छाने लगा है, दिल गुनगुनाने लगा है।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, हेलो हिसार में स्वागत है आपका बहुत बहुत। कौन बोल रहे हैं आप?
0: जी हम आपके नियमित श्रोता साथी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जांगड़ा जी, पहले भी कॉल आई हैं आपकी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बताइए क्या करते हैं आजकल?
0: फिलहाल तो खेती बाड़ी का काम अभी नहीं है, मतलब सब कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी ज्यादातर घर में आराम करना होता है।
1: अच्छा, मतलब खेती बाड़ी का काम रहता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता होगा तो आराम की फुर्सत नहीं मिलती होगी आपको, है ना?
0: जी
1: क्या क्या लगा रखा है खेतों में इस वक्त? कुछ भी नहीं है?
0: नहीं, अभी कहने का मतलब है कि पिछला फसल वो सब कंप्लीट हो गया है, अभी खेत खाली है, अभी कुछ भी
1: अच्छा,
0: नहीं है।
1: अब अगली फसल क्या बोएंगे?
0: धान लगाएंगे जस्ट 15 जून के आसपास।
1: अच्छा, तो योगेश जी रेडियो का शौक कब से है आपको?
0: मुझे लगभग 22-23 साल हो गया जुड़े हुए, और अभी
1: अच्छा,
0: 35 साल का हूँ।
1: कितने साल के हैं?
0: 35, 35।
1: अच्छा, और 22 साल जुड़े हुए हो गए आपको, मतलब
0: हाँ
1: बचपन से
0: जी,
1: सुन रहे हैं आप लगभग।
0: लगातार फोन कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सुनते तो कृषि वगैरह के भी कार्यक्रम
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: लेकिन फोन में सबसे ज्यादा दीवानी है।
1: तो आपके ये परिवार में पहले भी आपके पिता या दादा सुनते थे रेडियो, जिससे
0: हाँ
1: आपको शौक हुआ?
0: जी, पिताजी लोग सुनते थे, और पहले बड़ा बड़ा रेडियो भी था घर में।
1: जी, पहले रेडियो सेट हुआ करते थे, आजकल तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा
0: जी
1: योगेश जी जान के। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज हेलो हिसार में?
0: फिल्म कभी कुछ कभी खुशी कभी गम का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए।
1: जी जरूर, इसका टाइटल सॉन्ग भेज रहे हैं हम आपको योगेश जी, और करते रहिएगा ऐसे ही, जुड़े रहिएगा हमसे।

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं राधेश्याम कटारिया श्री कर्मपुर जिला श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं? राजस्थान का मौसम कैसा है आजकल?
0: आज तो मौसम खराब ही है मैडम, धूल
1: अच्छा, आंधी बांधी चल रही है?
0: धूल भरी आंधी वाला है।
1: अच्छा, आजकल मौसम के मिजाज कुछ बदले बदले से हैं। कभी गर्मी हो जाती है, रात को ओले पड़ जाते हैं, फिर सुबह फिर धूप हो जाती है ना?
0: हाँ जी हाँ जी, मौसम तो अब गर्मी में तो ऐसा ही रहेगा।
1: हाँ, चलिए बताइए राधेश्याम जी, और क्या चल रहा है?
0: बस मैडम गर्मी रहते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, मस्त रहते हैं, संगीत सुनते हैं।
1: चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
0: आज है मैडम साहेबजादे का गाना है, कैसे
1: कौन सा गाना है?
0: घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, ओ बेलिया मेरा लौंग खो गया ढूंढ के ला दे।
1: अच्छा ठीक है, राधे श्याम जी भेज रहे हैं आपकी पसंद पर आपका ये गीत। आप सुनिए और जुड़े रहिए हमसे ऐसे।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो। हाँ जी हेलो सर, में स्वागत है आपका बहुत बहुत। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते रितु कौशल
0: अरे वाह, आपने तो आवाज पहचान ली।
1: जी। हाँ जी, गांव बड़ुआ जिला भिवानी तहसील सुवानी से विनोदिंदा बोलूं जी।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: अच्छे, मैं खेत में काम करके आया, रोटी खान लग रही है मैम।
0: अच्छा, रोटी खाते खाते आपने कॉल किया हमें।
1: हाँ जी, और आपकी रिकॉर्डिंग याद आ गई जी।
0: चलिए, बढ़िया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इतने व्यस्त दिनचर्या में से भी टाइम निकाल लेते हैं और हमसे जुड़ते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है। और
1: जी बस
0: बताइए, क्या कर रहे हैं खास कुछ खेती के अलावा?
1: यही खेती बाड़ी का काम चल रहा है जी।
0: गीत कौन सा सुनेंगे आज हेलो हिसार में?
1: ये दिए सुना जी, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे।
0: धन्यवाद, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं गीत।

0: आज के हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार, तकनीकी सहयोग रहा केवल कृष्ण जी का। इसी तरह आपके मनपसंद गीतों के बहार लेकर हम आते रहेंगे। प्रोग्राम हेलो हिसार में आप सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार, हिसार।

90 सालों की यादें अब फिटनेस और फन के साथ। आकाशवाणी हिसार लेकर आ रहा है मैराथन 17 मई सुबह 6:15 बजे। यहाँ होगा म्यूजिक, जुम्बा, एरोबिक्स और फुल एनर्जेटिक वाइब्स। तैयार हो जाइए रन करने, एंजॉय करने और 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी सेलिब्रेट करने के लिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर

0: अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर
1: करते हुए फील्डर से नहीं रुकी गेंद सीमा रेखा के बाहर,
0: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

90 सालों की यादें अब फिटनेस और फन के साथ। आकाशवाणी हिसार लेकर आ रहा है मैराथन 17 मई सुबह 6:15 बजे, जहां होगा म्यूजिक, जुम्बा, एरोबिक्स और फुल एनर्जेटिक वाइब्स। तैयार हो जाइए रन करने, एंजॉय करने और 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी सेलिब्रेट करने के लिए। आकाशवाणी हिसार, हर जनरेशन के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात

0: की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह प्रथम सभा के अंतर्गत 5:53 पर आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद।